मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा।

0: तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना।

आरंभ करते हैं देशभक्ति रचना से। माँ की ममता का दूसरा रूप है हमारी धरती माता। आइए सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं माँ समान अपनी जन्मभूमि को।

प्रकृति परमात्मा का ही दूसरा रूप है और समस्त प्राणी इस प्रकृति का अंग। ईश्वर सदैव अपनी कृति को अपने नजदीक रखता है। बीज से पेड़ का पैदा होना, फिर उससे बीज बनना, ये सब प्रकृति के माध्यम से ही उस परमात्मा का चक्र है जिसमें हम सब शामिल हैं। आइए आराधना करें परमपिता परमेश्वर की।

सबसे अधिक तृष्णा मानव स्वभाव में ही पाई जाती है। फिर भी अचरज इस बात का है कि मनुष्य स्वयं को सबसे समझदार प्राणी कहता है। इसे हम क्या कहें, मानव का अतिरेक या प्रभु की लीला? लेकिन उसी परमेश्वर की आराधना हमें इस तृष्णा से, इस माया से विरक्त कर सकती है।

ये जीवन पथ अनिश्चित है, फिर भी हर कोई अपने लिए लंबी आयु की कामना करता है और प्रभु से यही प्रार्थना करता है। कितना अच्छा हो यदि प्राणी ये समझ जाए कि लंबी आयु के बजाय उसे उस परमात्मा से वे पल मांगने चाहिए जिनमें परमात्मा का साथ हो, उसका आशीर्वाद।

जीवन में हम सब सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्थायी सुख प्रभु चरणों की वंदना से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है, क्योंकि उसके कर्म हरि नाम में आस्था से संस्कारित होते हैं और उसका भाग्य इन्हीं सद्कर्मों से बनता है।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद हरिओम शरण, लता मंगेशकर, शरद सुतवणे और साधना सरगम की गायी भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का है, समूह स्वर में आप ये सुनेंगे।

0: आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख वसंत निर्गुणे का है।
1: कृति में आ शब्द लगने से कृति का अर्थ बदल जाता है। कृति का अर्थ रचना होता है। ये कार्य उपसर्ग का होता है जो शब्द से पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को विशेष अर्थ में स्थित कर देता है। यहां कृति में आ लगकर आकृति हुआ है, जिसका अर्थ किसी पदार्थ या प्राणी का आकार प्रकार हो जाता है। कोई भी व्याकरणविद आकृति शब्द की यही सामासिकता बता सकता है, पर मुझे आकृति शब्द बहुत आकर्षित करता है। आकृति में किसी की मूर्ति बसी होती है। ये सृष्टि ईश्वर की कृति है, इससे बड़ी कोई आकृति भी नहीं हो सकती। इस आकृति में सब कुछ समाया है, सूक्ष्म से लगाकर विराट तक, लघु से लगाकर विशाल तक, तिल से लगाकर पहाड़ तक। ये सब आकृतियां अलग अलग अस्तित्व रखती हैं। आकृति के बिना ये संसार अधूरा है। जहां देखो वहां हमें आकृति दिखाई देती है। सारा संसार आकृतियों से परिपूर्ण है। आकृति के बिना कोई पदार्थ अथवा प्राणी स्थिर नहीं रह सकता। हर पदार्थ की अपनी आकृति है। आकृति को हम बनावट कह सकते हैं। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों को जरा ध्यान से देखिए। विश्व में कितनी ही आकृतियों का मेला लगा है। किसी भी कृति को हम आकृति से ही पहचानते हैं। आकृति गढ़ने का काम प्रकृति करती है। प्रकृति को हमने ईश्वर माना है। प्रकृति और ईश्वर दोनों बराबर हैं। गहराई से देखें तो प्रकृति और ईश्वर की कोई आकृति नहीं है। दोनों निराकार हैं, फिर भी वे आकृति गढ़ते हैं। प्रकृति को आकृति गढ़ने की मूल शक्ति मिली है। इसके कारण अमूर्त प्रकृति मूर्त होती है। प्रकृति अपनी ही मूर्ति बार बार गढ़ती है। इसमें उसकी सर्जन और विसर्जन की मूल प्रवृत्ति है। प्रकृति का नियम है, वो फिर फिर अपना रूप या आकृति ग्रहण करती है। इस रूप परिवर्तन में प्रकृति अपना नया आकार ले लेती है, लेकिन उसका मूल आकार कभी नहीं बदलता। एक बीज जिस पेड़ को बनाता है, वो बीज उसी पेड़ को हर समय में गढ़ता है। न उसका आकार बदलता और न उसकी प्रकृति। एक आम का बीज हमेशा आम्र वृक्ष ही पैदा करेगा। प्रकृति का यह दृढ़ नियम है, इसे ऋत कहते हैं। एक बीज में पूरे पौधे या पेड़ का आकार समाया हुआ होता है। हम प्राणी भी इस नियम से बंधे हुए हैं। प्रकृति के इसी गुण की हम पूजा करते हैं। जो क्षण वर्तमान है, वो एक पल बाद अतीत में चला जाता है, और जो आने वाला पल है, वो वर्तमान में बदल जाता है। वर्तमान ही नित्य होता है। सांसों के साथ काल की गणना की जाती है। जो सांस हम ले रहे हैं, वो वर्तमान है। जो सांस चली जाती है, वो अतीत बन जाती है। आने वाली सांस भविष्य की सांस होती है। पता नहीं अगली सांस आए या ना आए। ये काल की कृति है। इस कृति की कोई आकृति नहीं होती। फिर भी काल अदृश्यमान होकर निरंतर हमारे साथ है, सांस के साथ है। काल की यही नियति है। असली आकृतियां हमारे मन में बनती हैं, जिन्हें छवि भी कह सकते हैं, जिन्हें बिंब भी कह सकते हैं। मन की छवियां अनंत हैं, जिनकी आकृतियां बनती मिटती हैं। मन की ये छवियां या आकृतियां शब्द का रूप ले लेती हैं, तो कोई कविता बन जाती है, कोई कथा का रूप धारण

0: कर लेती है। यहां तक कोई चित्रकार हो जाती है तो कोई स्वराकार में बदल जाती है। यह अमूर्त से मूर्त की ओर जाने की यात्रा है, कृति से आकृति बनने की यात्रा है। मनुष्य एक कृति है, इस कृति में से वो अपनी एक आकृति गढ़ता है जो उसकी पहचान होती है। इस पहचान या आकृति को बचाने की कोशिश मनुष्य दिन रात करता है। कभी वो इंसान बनता है, कभी वो शैतान बन जाता है, तो कभी वह भगवान भी बनकर दिखा देता है। मनुष्य की आकृति का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या बनेगा। पर प्रकृति की आकृति कभी नहीं बदलेगी। जिस दिन प्रकृति बदलेगी, उस दिन आदमी की आकृति क्या होगी, सोचने समझने की जरूरत है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर आकांक्षा पांडे। वार्ता का विषय है जैव संवर्धित फसलों का पोषण महत्व।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे बायोफोर्टिफाइड फसलों की। बायोफोर्टिफाइड फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें पारंपरिक किस्मों की तुलना में प्राकृतिक तरीके से ब्रीडिंग जैव प्रजनन द्वारा अधिक पोषक तत्व विकसित किए गए होते हैं। इनका उद्देश्य है आम लोगों को रोज के भोजन से ही ज़्यादा पोषक तत्व मिल सकें। बायोफोर्टिफाइड फसलें भोजन को ही दवा बना देती हैं, छुपी हुई भूख को दूर करती हैं, कम लागत में अधिक पोषण देती हैं। भारत में पोषण सुरक्षा मिशन की यह रीढ़ की हड्डी कहलाती हैं। अगर हम एक लाइन में बात करें तो बायोफोर्टिफाइड फसलें साधारण अनाज को सुपर न्यूट्रिशियस फूड बना देती हैं। आज आप जानते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वह कहीं ना कहीं फसलों के उत्पादन में एक बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारा किसान भाई ले रहे हैं, लेकिन यहीं यदि हम बात करते हैं पोषण की, तो हमारे किसान भाइयों का परिवार और हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है वो कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी से बीमारी ग्रस्त है, और कहीं ना कहीं एनीमिया, आँखों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, प्रोटीन की कमी, जिंक की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इस तरीके की शारीरिक बीमारियां पोषक तत्वों की कमी के कारण देखी जाती हैं। किसान भाइयों, जो आपका साधारण बीज है, चाहे वो गेहूं का हो, चावल का हो, सब्जियों का हो, जो भी बीज साधारण बीज है, उन्हीं किस्म को वैज्ञानिकों द्वारा और कई सालों के प्रयास से बायोफोर्टिफाइड कर दिया जाता है। मतलब उन्हें ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ पोषण युक्त भी कर दिया जाता है। तो अब किसान भाइयों को सामान्य बीज को की किस्म को छोड़कर अब आपको बायोफोर्टिफाइड फसलों का उत्पादन लेना है, जिसमें लगाने का तरीका सामान्य है। जैसे आप नॉर्मल धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, चना मक्का लगाते हैं, वैसे ही लगाना है, वैसे ही खेत की तैयारी है, उतने ही उर्वरकों का प्रयोग करना है और वैसे ही आपको बीमारी रोगों से उनको बचाना है। लेकिन आपको उसमें जब आप उसका भोजन में उपयोग करेंगे या हमारे देश के लोग उसका भोजन में उपयोग करेंगे, तो जो सामान्य फसल से हमें पोषण मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पोषण हमको मिलेगा। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो जो सामान्य गेहूं की किस्म होती है उसमें हमें 30 से 35 ppm आयरन मिलता है। बायोफोर्टिफाइड गेहूं की किस्म को हम लगाते हैं और भोजन में उपयोग करते हैं तो हमें 40 से 60 ppm मिलता है। जिंक हमें 25 से 30 ppm मिलता है। यहीं पर बायोफोर्टिफाइड गेहूं लगाते हैं तो उसे 40 से 50 ppm मिलता है। प्रोटीन में सामान्य गेहूं में 10 से 11 प्रतिशत मात्रा होती है और बायोफोर्टिफाइड गेहूं में 12 से 14 होती है। यह एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है। ऐसे ही जब भी आप बायोफोर्टिफाइड फसलें लगाते हैं तो पोषण को हमारी जो फसल होती है उसमें कहीं ना कहीं पोषण की अधिकता आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप जहाँ से भी बीज खरीदते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर आपकी

0: जो नॉर्मल दुकानें हों, या फिर तो आप एक बार वैज्ञानिकों से संपर्क करके किस्मों को उन्हीं को चयनित कीजिए जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो और बायोफोर्टिफाइड फसलें हों।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलेज

0: कारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கட்டுப்படை கட்டினால் சுயம் ஹி கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है. संस्कृत समाचार हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे.
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा. अथ वार्ताः. प्रशासनेन CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एकसदस्यीय समितिः संघटिता. समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्षपदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति. समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति. अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थं उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलं आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्. अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः. राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्णसाधनं वर्तते. शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति. गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म. अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति. सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्. द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते.
3: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है. मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए. युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा.
2: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्. न्यायमूर्तिः शीलनागो श्रीचन्द्रशेखरः सञ्जीवसचदेवा अरुणपल्ली वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः. अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता. राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते. एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्टपञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते. समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्रामपञ्चायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तमपञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते. भारतीयर्थविभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति. आगामी दिवसद्वयपर्यन्तं हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्रांध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडित्पातस्य च संभावना वर्तते.

0: अन्ते क्रीडावार्तासु महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया।

इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विश्व साइकिल दिवस पर श्री एस एन सिंह, अध्यक्ष साइकिल संगठन और ग्रीन प्लैनेट बाइक राइडर्स भोपाल से चर्चा। पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता श्री राजेश बादल से बातचीत होगी माधव राव सप्रे संग्रहालय में होने जा रहे आयोजन के बारे में। साथ ही आप सुन सकेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में यूनिसेफ भोपाल और पर्यावरण नियोजन संस्था एप्को के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की जानकारी यूनिसेफ भोपाल के संचार विशेषज्ञ श्री अनिल गुलाटी से। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम सुना जा सकेगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राजकुमार तिवारी के गाए भजन। 9:30 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम होगा प्रदेश की सुर्खियों में। आज सुनेंगे आप एनडीए सरकार के 12 वर्ष विषय पर चर्चा। विशेषज्ञ होंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और मृगेंद्र सिंह। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण सुबह 10 होगा। 10:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला संसार। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रागमाला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन। राग होगा बसंत मुखारी। दिन में 11 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुना जा सकेगा। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि फोन इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग हम रोजाना सुबह 10:30 से 11 के मध्य करते हैं। दिन में 12 और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिएगा इसकी 8वीं कड़ी। 1 महिला कार्यक्रम होगा। 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इन चारों कार्यक्रमों में प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की होगी। दिन में 2 शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात्रि 8:35 पर चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 6 एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा। रात्रि 8 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार

0: की 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण विषय पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक अशोक वन का पेड़, लेखन और प्रस्तुति जगदीश अधिकारी की होगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। आज सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन, राग होगा विहाग। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के, वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तब इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं, और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के

0: अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहाँ वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में UPI ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में UPI के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन UPI के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्वसहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडौरी में जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है सभी श्रोताओं का आज कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूँ जूही राव। श्रोताओं, जून माह का आज पहला बुधवार है और आज ग्लोबल रनिंग डे के रूप में इसे मनाया जाता है। दौड़ने की खुशी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये बताया जाता है, इस बात की जागरूकता फैलाई जाती है कि दौड़ना न सिर्फ शरीर को फिट रखता है बल्कि दिमाग को भी तरोताज़ा रखता है। दौड़ने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सही होता है और इसके पीछे साइंस भी है। दिल और फेफड़ों की मजबूती, साथ ही मेटाबॉलिज्म में भी आप इसका असर देख सकते हैं। तो दौड़ने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, इससे आपके जीवन में खुशी भी आती है, नींद और फोकस में सुधार होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लंबी उम्र भी आपको इससे मिल सकती है। लैंसेट जर्नल के एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 50 मिनट दौड़ने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 5 साल तक बढ़ सकती है। तो श्रोताओं, यदि आप दौड़ने को अपने जीवन में शामिल करें तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं और आपके जीवन में यदि आप महसूस करते हैं कि आपको थोड़ा आलस आता है, सुस्ती छाती है सुबह सुबह, तो आप ज़रूर रनिंग करें। इसकी शुरुआत धीरे धीरे करें, पहले जॉगिंग करें, लेकिन सबसे पहले वार्म अप करना ना भूलें और किसी विशेषज्ञ के साथ में इसे प्रैक्टिस करें।

0: हार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं अब आपको बताने जा रहे हैं आज के समाचार पत्रों से कुछ मुख्य समाचार और उपयोगी जानकारियां।

सबसे पहली खबर मौसम से जुड़ी हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि गॉडज़िला अल नीनो के अंतर्गत 3 माह सूखे जैसे हालात और बाढ़ झेलेगा भारत, और भारतीय पूर्वानुमान कह रहा है कि कल केरल आ सकता है मानसून।

इस बार पहली बार पहली से आठवीं तक 92 लाख छात्रों को पैसा नहीं, सीधे 2 जोड़ी सिली हुई ड्रेस मिलेंगी। पंजीयन शुल्क के लिए वित्त विभाग देगा पैसा। 5 साल बाद डीबीटी बंद, जुलाई अगस्त तक स्कूलों में पहुंचेगी ड्रेस। 48 लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक। 3,800 करोड़ का रजिस्ट्री खर्च सरकार उठाएगी। जर्मन एयरपोर्ट पर भारतीयों के लिए ट्रांजिट वीजा में छूट। श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारियां आज के समाचार पत्रों से, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं सुबीर सेन की आवाज में आज का पंछी फिल्म का ये सुरीला नगमा।

श्रोताओं, खेल जगत से एक और खबर आपके लिए। फीफा में दम दिखाएंगे भारतवंशी तहसीन। जब बाकी बच्चे आराम करते थे तब दिन भर प्रैक्टिस करते थे, तहसीन कतर की ओर से खेलेंगे। मलयाली हैं ये और फीफा के इतिहास में दूसरे भारतीय प्लेयर हैं।

गगन पर पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर।

दिन मुकद्दर आएगा झूमता सवेरा, जीवन में रोशनी को लेकर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, आज है विश्व साइकिल दिवस और आज के दिन हमने चर्चा की है श्री एस एन सिंह से, जो कि अध्यक्ष हैं भोपाल ज़िला साइकिल राइडर्स एसोसिएशन और ग्रीन प्लैनेट बाइक राइडर्स एसोसिएशन के, और जानना चाहा कि साइकिल चलाना क्यों आवश्यक है और ये आज के समय की ज़रूरत किस तरह से बनता जा रहा है। स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम एस एन सिंह है और मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन करके हमारा 25 साल पुराना क्लब है, जिसका संचालन हम सभी लोग करते हैं और जिसकी स्थापना 25 साल पहले श्री सत्यप्रकाश जी ने की थी, जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर थे, जो हमारे बीच में नहीं रहे। तो 25 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए थे, आज हम उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड साइकिल डे बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका डिक्लेरेशन हुआ था कि हम वर्ल्ड वाइड जो है 3 जून को साइकिल डे मनाएंगे, और इसके पीछे बेसिकली कारण जो रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और प्लस लोगों की हेल्थ, तो बेसिकली रीज़न ये था कि हम साइकिल को जो है प्रमोट करें, जो कि एक इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ही और साथ में पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काफ़ी इसका योगदान रहता है। अगर आप साइकिलिंग करते आ रहे हैं तो ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड डिक्लेरेशन इसका हुआ जनरल असेंबली में और पूरा विश्व 3 जून को साइकिल डे मनाता है।
0: सर, लंबे समय से आप साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं, युवाओं की कितनी रुचि बढ़ी है साइकिलिंग में, ये हम जानना चाहेंगे।
1: पिछले 25 साल से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले आप देखेंगे तो एडवांस साइकिल नहीं होती थी, आज बहुत एडवांस साइकिल्स अवेलेबल हैं। वो इसलिए हैं कि लोगों में जागृति पैदा की है हम सभी ने मिलके, इसलिए ये जो साइकिल

0: नई नई साइकिल कस्टमाइज साइकिल भी कंपनीज बना बना के दे रही हैं, अच्छे अच्छे जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी साइकिल अपना डिस्प्ले कर रही हैं। तो ये इस बात को शो करता है कि लोगों ने मतलब जो है साइकिल में इंटरेस्ट लेना शो कर दिया था, क्योंकि लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि साइकिल जो है एक साइकिल नहीं बल्कि एक हेल्थ इक्विपमेंट है। हम लोगों को 25 साल से समझाते आ रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली में साइकिल को अपनाएं ताकि आप एक स्वस्थ जीवन को लीड कर पाएं और आप साथ में ये जो बीमारियां हैं खास करके टीबी है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, ये आपकी बीमारी नहीं है, एक जीवन शैली कि आप उसको कैसे जी रहे हो। तो ये सभी चीज़ों को हम चाहते थे और चाहते हैं कि और काफ़ी हमने काम किया है लोगों को जागृत करें कि आप अपनी लाइफ में साइकिल को अपनाएं, एक डिसिप्लिन लाइफ को आप जो है लीड करें। वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज डॉक्टर कहते हैं कि इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, आप आधा घंटा भी साइकिल चलाएंगे तो जो भी स्ट्रेस आपके माइंड में है 100% वो ख़त्म हो जाएगा और थ्रू आउट द डे आप जो है फिट एंड फाइन महसूस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की काफ़ी कि आप जब भी अपने बच्चों को या स्वयं अगर कोई 4-व्हीलर ले रहे हैं या 2-व्हीलर ले रहे हैं तो आप बेसिक साइकिल जरूर लें ताकि आप उसको चलाएं भी, पेट्रोल की भी बचत कर दें, ऊर्जा की भी बचत करें। क्योंकि होता क्या है कि आज जैसे वर्ल्ड वाइड आपने देखा तेल का क्राइसिस कितना आ गया है, मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब जिसको हम 25 साल से बोल रहे हैं कि आप जो है साइकिल को अपनी जीवन शैली में अपनाएं ताकि तेल की और ऊर्जा की बचत हो।
1: और भी प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में सभी को अपील की है कि आप मतलब ईंधन का कम से कम उपयोग करें और बचाएं उसको, तो उसके लिए साइकिलिंग करना एक मतलब एक उपाय के रूप में रहेगा।
0: ये हम 25 साल से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा, हम तो वैसे ही 25 साल से कह रहे हैं, हालांकि उनका कहना मतलब ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मोटिवेशनल वो है थॉट और हम बड़े सभी साइकिलिस्ट जो हैं इससे मोटिवेटेड हैं कि उन्होंने इस चीज़ को मतलब जो है एहसास किया और उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है। हम तो मतलब सभी स्कूल और कॉलेज में जाके वर्कशॉप करते आए हैं, वहाँ के टीचर्स को बोलते आए हैं, पेरेंट्स को बोलते आए हैं कि आप अपने बच्चों को जो है साइकिल जरूर दिलवाएं। तो ये बेसिकली क्या है कि देखिए इससे मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको मतलब समाज को मजबूत बनाना है तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, यही फिट इंडिया जो मोदी जी ने कहा है उसका कारण ही यह है। क्योंकि अगर आप फिट हैं तो नेचुरली आप समाज को कुछ देने लायक बनेंगे, अगर आप अनफिट हैं तो समाज को आप क्या देंगे। तो उनका फिट इंडिया मूवमेंट ही इसीलिए चलाया जा रहा है पूरे देश में कि आप जो है फिट रहें, स्वस्थ रहें और समाज को एक पॉजिटिव लाइन दें, प्रेरणा स्रोत बने, आने वाली जनरेशन को बताएं। क्योंकि आज जो जनरेशन है उनके पास डायरेक्शन नहीं है बेसिकली, क्योंकि एक तो स्ट्रेस बहुत है उनमें, वो मतलब क्योंकि उनको कुछ मतलब जो है एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब ओबेसिटी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, भोपाल में भी आप देखेंगे और इंडिया में तो मेरे ख्याल से 3rd-4th नंबर पे हैं हम। तो ये कारण ही वो है कि स्ट्रेस तो है ही और साथ में आपकी इनडिसिप्लिन लाइफ है, आपका खाने का टाइम नहीं है, आपका एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें दूर हो सकती हैं, हो रही, हमने देखा हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको हार्ट की बीमारी थी, डायबिटीज़ थी और ओबेसिटी थी, आज वो बिल्कुल फिट हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि भोपाल सिटी जो है साइकिल सिटी के नाम से मशहूर हो, ये हम ध्येय लेके काम कर रहे हैं कि जब भी कोई बाहर बात करे कि भोपाल अच्छा हाँ जहाँ सबसे ज़्यादा साइकिल चलती शायद अब उस शहर की बात कर रहे हैं।
1: तो सर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के अवसर पर आप लोग क्या क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आज?
0: कल से हमने शुरुआत कर दी भोपाल में, नेहरू युवा केंद्र हुआ करता था उसका नाम चेंज हो गया है, युवा भारत केंद्र कर दिया गया, उसके एसोसिएशन में हमने राइड शुरू कर दी। कल हमारी मॉर्निंग में राइड थी 5 किलोमीटर की, हमने शुरुआत की वर्ल्ड साइकिल डे में। अस्मिता करके एक साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है जो देश में विमेंस लीग के लिए जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब तो आज वीमेंस लीग हम करवा रहे हैं जिसमें उसे वीमेंस के लिए है, जो एक रेस है वीमेंस की, वो रैली नहीं है, जो वाल्मी से शुरू होकर कैरवा डैम और कैरवा डैम से लेके वाल्मी पे ख़त्म होगा और उसमें कैटेगरी वाइज है, उसमें जो सेलेक्ट होंगी वीमेंस वो जो है स्टेट में पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, स्टेट में पार्टिसिपेट करके अगर वो आगे आती हैं तो वो नेशनल तक जाएंगी। तो ये उनको मतलब हम चाहते हैं कि वो एक नेशनल मतलब प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आए वीमेंस, जहाँ पे मतलब उनको अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका मिले। उसके बाद में हम सब मिलके जो है 9:30 से जो है एक रैली करेंगे, ज़्यादा शॉर्ट रैली करेंगे क्योंकि वर्ल्ड बाइसिकल डे है। ये वही कलियासो से कह रहा हूँ हम मतलब जो हम मास बाइसिकल रैली जो है 7 तारीख को करने वाले हैं, इसके साथ 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हम जो कर रहे हैं वो आपका एनजीटी

0: डिपार्टमेंट है, उनके एसोसिएशन में हम 5 तारीख को एक रैली का आयोजन कर रहे हैं भोपाल में।
1: 7 तारीख को मेगा इवेंट होने जा रहा है और 5 को भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी आप लोग कुछ इवेंट करने जा रहे हैं साइकिलिंग को लेकर के। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अगर हमारे सुनने वाले करना चाहें तो वो किस तरह से करवा सकते हैं?
0: मुझे कॉल कर लें, वो जो मेरा नंबर है 9826465864, इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं हमारा और फेसबुक में भी देख सकते हैं इस नाम से। इस पे अगर वो कॉल कर लें मेरे को तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, GPBRA ग्रुप में उनको अपडेट मिलता रहेगा और सारी जानकारी मिल जाएगी उनको कि 5 तारीख को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है उसके लिए कहाँ पे एकत्रित होना है और क्या रूट रहेगा और कहाँ फिनिश होगा। और 7 तारीख को जो वर्ल्ड बाइसिकल डे, मोर देन 10,000 राइडर्स जो एक साथ राइड करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें, दूसरों को प्रेरित करें और आपके माध्यम से जहाँ जहाँ मतलब जो है मेरा जो कम्युनिकेशन जाएगा, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो साइकिल को अपनी जीवन शैली में अपनाएं और स्वस्थ रहें।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे श्री एसएन सिंह, बता रहे थे साइकिलिंग के फ़ायदों के बारे में। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं साइकिलिंग से जो आगामी इवेंट्स हैं उनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9826465864 इस नंबर पर। और आज जो इवेंट हो रहा है महिलाओं का विमेंस लीग, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप ऑन द स्पॉट जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वाल्मी से ये शुरू हो चुकी है विमेंस लीग और आगामी 5 और 7 तारीख को भी साइकिलिंग होने जा रही है। तो अगर आप साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, भारतीय पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता श्री राजेश बादल से हमने बातचीत की और जाने कि आज क्या कार्यक्रम होने जा रहा है माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय में। आइए आपको भी हम सुनवाएं। बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। भारत में हिंदी पत्रकारिता का जो सफर है वो बड़ा दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। निश्चित रूप से 200 साल पहले ना तो वो तकनीक थी छपाई की, ना उस तरह के पत्रकार थे और ना ही वैसा बाजार था और ना ही आज की तरह की सरकारें होती थी, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव पसार रही थी और धीरे धीरे उसने पूरे देश को गुलाम बना लिया। तो हमारी जो पत्रकारिता का शुरुआती कदम है वो आज़ादी के लिए सरोकार वाली पत्रकारिता का था। तो हम लोग आगे बढ़ते गए, आज़ादी के लिए संघर्ष करते गए। युगल किशोर शुक्ल जी ने जो शुरुआत की, बाद में हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार भगत सिंह, इन तमाम लोगों ने फिर उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद तकनीक का विकास हुआ, बाजार हावी हुआ, प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं, तो मिशन से प्रोफेशन बन गया और मिशन से जब प्रोफेशन बन गया तो कुछ चीज़ें ऐसी भी इस प्रोफेशन में दाखिल हो गई जो नहीं होती तो अच्छा होता। देखिए, बाजार जो होता है वो पैसे की भाषा समझता है और पत्रकारिता अपने सरोकार समझती है, तो हमें कहीं ना कहीं बीच में एक संतुलन का रास्ता बनाना ज़रूरी है। आज के दौर की जो चुनौतियां हैं वो यही है।
0: सर, आपने भी लंबा समय दिया है पत्रकारिता को, आप इस समय भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपके जो अनुभव रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए पत्रकारिता मेरा व्यवसाय नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए ये जीवन शैली है और मैंने इसका आनंद लिया है। जिस तरह से एक बहते हुए झरने में आप आनंद लेते हैं ठंडे ठंडे पानी का, तो मैंने अपनी जिंदगी को पत्रकारिता के झरने में बह जाने दिया है। तो आज मुझे 50 साल हो गए, मैंने प्रिंट में काम किया, रेडियो में काम किया, टेलीविज़न में काम किया और अब डिजिटल और जो नए प्लेटफॉर्म हैं या जो नए अवतार हैं सोशल मीडिया के, उन सब पे काम कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा। तो मैंने कभी इसको ये नहीं माना कि इससे मेरा घर चलेगा या पेट भरेगा, ये मेरी नियति थी कि मैं काम करता गया और वो हमारा पेट भरती गई।
0: सर, अब हिंदी पत्रकारिता के सामने आज के समय में क्या चुनौतियां आप मानते हैं, जबकि बहुत सारे माध्यम
1: भारतीय हिंदी पत्रकारिता के सामने चुनौती तो तब भी आई थी जब केवल रेडियो था और अखबारों का विस्तार हुआ आज़ादी के बाद, तो लोगों को लगा कि अब रेडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रेडियो ख़त्म नहीं हुआ, अखबार बढ़ते गए और जब अखबार बढ़ रहे थे तो टेलीविज़न आ गया, तो फिर ये कहा गया कि अब तो टेलीविज़न छा जाएगा, अखबार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद जब टेलीविज़न चरम पे था तो हमने देखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, तब ये कहा गया कि अब तो चैनल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन देखिए जो माध्यम है ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति जो है हमारी, अगर हम उस अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं और अपने सरोकारों पर ध्यान देते हैं तो कोई माध्यम किसी दूसरे माध्यम के लिए कभी चुनौती नहीं बन सकता।
0: युवा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जो मैं देख रहा हूँ कि आज नए पत्रकार जो आ रहे हैं उनका ध्यान इस बात पर तो रहता है कि जैसे ही उनको डिग्री मिलेगी या डिप्लोमा मिलेगा तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी, रेजिग्नेशन उनका क्या होगा, उनको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, चैनल में एंकरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अखबार में बाईलाइन छपेगी कि नहीं छपेगी, इन सब की ओर है। हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहेंगे, ये चीज़ें तो अपने आप आपकी झोली में आएंगी। आपको एंकर भी बनने का मौका मिलेगा, आपको बाईलाइन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि नए पत्रकार

0: पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ने का जो मामला है वो ऐसा है कि अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम पे आप चले जाओ, चाहे रेडियो में, चाहे प्रिंट में, चाहे टेलीविजन में, बिना शब्दों के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बहुत बड़ा शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो शब्द भंडार आपके पास नहीं आएगा।
1: सर, आज 3 जून को सप्रे संग्रहालय में जो आयोजन होने जा रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: सप्रे संग्रहालय परिवार की ओर से 3 जून को होने वाले इस आयोजन में मैं आकाशवाणी के मार्फत सभी को आमंत्रित करता हूँ। 3 जून को हम अपने उन पूर्वजों को याद करेंगे जिन्होंने भारतीय हिंदी पत्रकारिता में पिछले 200 साल से अपना काम, अपने सरोकारों, सिद्धांत

0: उनकी ज़िंदगी हमेशा समाज और देश के लिए रही है, तो हम उन पूर्वजों को याद करेंगे। कई तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि अब पूर्वजों के बारे में, अब वो तो हमारे पास अपने बारे में बताने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास उनकी कलम है, हमारे पास उनके पोस्टर हैं, हमारे पास उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमारे पास उनकी पत्रिकाएँ हैं, हमारे पास उनके समाचार पत्र हैं। तो हम उन प्रतीकों के माध्यम से हम अपने उन सारे पूर्वजों को याद करेंगे। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम होगा, महामहिम राज्यपाल इसमें आएंगे और मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जो शब्दों के प्रेमी हैं, जो पत्रकारिता के हामी हैं, जो अच्छा लिखना चाहते हैं, जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं और जो अच्छा बोलना चाहते हैं।
1: सर, भारतीय पत्रकारिता के ऊपर बात करने के लिए आपने इतना समय दिया और आपने आयोजन की भी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। शुक्रिया।
2: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे श्री राजेश बादल, बता रहे थे पत्रकारिता के बारे में और आज होने जा रहे आयोजन के बारे में।

0: नमस्कार, मैं हूं मीता पंडित। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। मैं बहुत फख्र महसूस करती हूं हमारे ऑल इंडिया रेडियो पे।
1: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यूनिसेफ भोपाल और पर्यावरण नियोजन संस्थान यानी एप्को के संयुक्त आयोजन की जानकारी आपको देंगे श्री अनिल गुलाटी। और साथ ही पर्यावरण दिवस पर इस बार के विषय के बारे में भी हमने उनसे जाना।
2: अनिल गुलाटी, संचार विशेषज्ञ यूनिसेफ, एनवायरनमेंट प्लानिंग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जिसको एप्को कहते हैं, और यूनिसेफ मिलके 3 तारीख को 5 जून के उपलक्ष में यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन करके एक इवेंट कर रहे हैं जो एप्को के शाहपुरा कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। और इसमें बच्चे आएंगे धार झाबुआ से, भोपाल से, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चे और युवा मिलके, खासकर युवा, क्लाइमेट एक्शन पे क्या कर सकते हैं। एप्को के कॉम्प्लेक्स में शाहपुरा पे ये इवेंट 3 बजे से होगा, जिसमें एप्को के जो सीनियर ऑफिशियल हैं श्री लोकेंद्र जी पार्टिसिपेट करेंगे, यूनिसेफ के ऑफिशियल्स होंगे, युवाओं से थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ी जानकारी साझा करेंगे, खासकर मिशन लाइफ को लेके कि युवा आज के डेट में क्या कर सकता है और उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इस बार का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो है क्लाइमेट एक्शन।
1: जो ये थीम है क्लाइमेट एक्शन, इसके बारे में

0: थोड़ा सा बताएं।
1: आप जैसे देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस बार गर्मी भी ज़्यादा, हीट वेव भी ज़्यादा है, कहते हैं एलनीनो के इफेक्ट से शायद बरसात भी कम आएगी, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है क्लाइमेट से। और मिशन लाइफ के जो चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल डीजल कम यूज़ करना, एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ करना, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं पैदल साइकिल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, मुझे लगता है इसमें युवा खास भूमिका निभा सकते हैं, खासकर से न्यू टू प्लास्टिक, सेविंग वाटर, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग पेट्रोल डीजल, एंड ऑल्सो यूजिंग मैकेनिज्म्स विच आर मोर एनवायरमेंट सस्टेनेबल। तो इस वजह से हमने इस मुद्दे पे चर्चा रखी है।
0: हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट एक्शन इस थीम पर यूनाइटेड नेशंस का क्या सोचना है।
1: जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है उस पर पूरे जगह पर अलग अलग तरह की इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो प्लांटेशन एक्टिविटीज हो, चाहे वो पानी बचाओ, से नो टू प्लास्टिक, हर मंत्रालय इस पे काम करता है। बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, और क्योंकि हम बच्चों और महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए करें। और सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि क्लाइमेट एक्शन उन पर इफेक्ट करता है जिन्होंने इसको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन है युवाओं का, और मुझे नहीं लगता कोई इससे बचा है, सब पे इम्पैक्ट करता है और वल्नरेबल है। तो अगर हम एक्शन आज लेंगे तभी जाके हम कुछ रोक पाएंगे, खासकर जैसे पेड़ों का बचाव कर सकेंगे, कोशिश करेंगे नया प्लांटेशन राइज कर सके, और अभी आने वाले टाइम पे मॉनसून ऑनसेट आएगा जैसे जुलाई में, तो एक राइट अपॉर्चुनिटी है एक्शंस को लेने के लिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लास्टिक का यूज़ अभी भी, जबकि सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन किया है, लेकिन बाकी जो प्लास्टिक है बहुत यूज़ होता है, खासकर इवेंट्स होते हैं तो प्लास्टिक की बोतल यूज़ होती है, पॉलीथिन बैग यूज़ होता है। तो मेरा ये निवेदन है, सबसे कैरी योर ओन बॉटल, कैरी योर ओन बैग, अगर कहीं जाएं सब्जी लेने तो अपना बैग खुद लेके जाएं, बाहर जाते हैं जैसे हम अपनी बॉटल कैरी करते हैं पानी के लिए, तो प्लीज़ कैरी योर ओन बॉटल। एंड क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर्स एक्शन फ्रॉम ऑल, जितने आपके लिसनर्स हैं सबको अपील है, प्लीज़ एक्ट नाउ, सेव क्लाइमेट, सेव योर अर्थ, दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी हैव टूडे, अदरवाइज वी माइट नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी, एंड वी विल बी मेकिंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अस। इस समय एक्शन इज लाइक अर्जेंट, नाउ नाउ नाउ, तभी जाके हम कुछ रोक पाएंगे जो चेंज हो रहा है।
0: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे श्री अनिल गुलाटी, यूनिसेफ भोपाल से बता रहे थे किस तरह से पर्यावरण एक्शन पर आज कार्यशाला होने जा रही है और किस तरह से आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर प्लास्टिक को आप मना करें और अपने साथ में कपड़े का झोला लेकर चलें।

0: श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ में इस गीत के साथ में आज का नमस्कार भोपाल होता है समाप्त। आगे दीजिए जूही राव को नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो।

0: जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों

0: को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2000

0: 27-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस।

पेश है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुरमई सवेरा कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात साइकिल दिवस की। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व साइकिल दिवस है। साइकिल से जुड़ी हमारी ना जाने कितनी प्यारी प्यारी खट्टी मीठी यादें हैं। आपको याद है बचपन में आपको जब पहला तोहफा मिला उसमें साइकिल एक रही होगी ज़रूर, क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है उसके बाद उसे साइकिल दी जाती है ताकि उसकी मसल्स मजबूत हों, वो बैलेंस बनाना सीख जाए, है ना। और जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आप स्कूल जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, और उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, तो आप फिटनेस के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। तो है ना, साइकिल हमारे जीवन के हर पड़ाव की प्यारी सी साथी। तो आइए आज साइकिल को याद करते हैं।

श्रोताओं, ये जो साइकिल है एक दौर में गांव की शान हुआ करती थी, शहरों की पहचान हुआ करती थी, और अब ये साइकिल जो है बहुत मॉडर्न होती जा रही है। साइकिल में आप देखते हैं कि गियर्स आ गए हैं, स्पीड के लिए आपके पास बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। किसी अगर बात की जाए साइकिल की, तो वो एक से बढ़कर एक अब होती जा रही है। श्रोताओं, साइकिल चलाना जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। पहले बात करते हैं सेहत की। अगर आप रेगुलर तौर पर साइकिल चलाते हैं तो शरीर से जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है, आपका हृदय मजबूत होता है और आपका शरीर पूरी तरह से फिट हो जाता है। आपके मसल्स मूवमेंट होता है, जॉइंट मूवमेंट होते हैं, तो आप पूरी तरह से स्फूर्ति और ताजगी का एहसास करते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं। सुबह अगर आप सैर पे जा रहे हैं तो थोड़ी देर आप साइकिल भी चलाएं और सैर भी करें। और अब बात करते हैं पर्यावरण की। जी हाँ, साइकिल जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाती है, तो पर्यावरण की भी सच्ची दोस्त है ना ये साइकिल।

श्रोताओं, साइकिल चलाइए लेकिन छलांग बिल्कुल मत लगाइएगा भाई, आपको अपना भी ख्याल रखना है और अपने अपनों का भी ख्याल रखना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि औषधि नहीं व्यायाम समाना, व्यय नहीं कोई लाभ महाना। जी हाँ, ये साइकिल पर भी ये बात पूरी तरह से फिट बैठती है। साइकिल से हमें लाभ तो है और इसमें कोई आपको खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इन्वेस्ट करके साइकिल खरीद लेते हैं तो आप उसे जब तक चाहें तब तक चला सकते हैं। परिवार के जितने सदस्य चाहें उतने सदस्य उस साइकिल से अपनी फिजिकल फिटनेस भी पा सकते हैं और इससे पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल है ना, वो प्रदूषण तो फैलाती नहीं है, बस आपको धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस करना होता है। वो तो आप कर ही लेंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुरमई सवेरा सुन रहे हैं आप आकाशवाणी भोपाल से। श्रोताओं, फिटनेस के लिए जिस तरह एक्सरसाइज ज़रूरी है, उतना ही आराम ज़रूरी है, और आराम हमें मिलता है भरपूर नींद से। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो नींद हमें आराम देती है, हम उसकी ही अनदेखी करते हैं। कई बार हमें नींद आ रही होती है, उसके बाद भी हम काम करते रहते हैं, या हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर हम हर वो काम करते हैं जिससे नींद हमारी चली जाए। और एक दौर ऐसा भी आता है कि हम चाह कर भी नींद पूरी नहीं ले पाते। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब आपको नींद आए तो आप ज़रूर शरीर को आराम दें, सोएं। आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन अ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जी हाँ, अगर आपको हेल्दी और वेल्दी दोनों रहना है तो नींद को नियंत्रित कीजिए। नींद का समय इतना रखिए कि आपके शरीर को पूरी नींद मिले। कम से कम 6 से 7 घंटे आप सोएं, शरीर को आराम मिलेगा, तभी तो आप नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे आगे।

श्रोताओं, सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज, नींद तो ज़रूरी है ही, साथ ही ज़रूरी है अपनों का साथ। जी हाँ, अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने मित्रों के साथ हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, तो इससे आपका मन जो है वो स्वस्थ रहता है। एक स्टडी में बताया गया है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनकी जो याददाश्त है वो किस तरह से ठीक रह सकती है। उसमें कहा गया है कि जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, ऐसे बुजुर्गों को याददाश्त कमजोर होने की बीमारी होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो फिर भाई, आप अगर रिटायर हो गए हैं, आप अगर घर में आराम की मुद्रा में हैं, तो ऐसा करें कि आप अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताएं। अगर आप उनके पास जा नहीं सकते, तो आजकल तो कई ऐसे साधन हैं कि आप उनसे संपर्क बनाए रख सकते हैं। आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, मोबाइल से नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, और वैसे तरीका तो पुराना है, लेकिन संवाद बनाए रखने का एक और तरीका है, वो है चिट्ठी। भाई, सरप्राइज़ के तौर पे अगर आप किसी को चिट्ठी लिखकर भेजें, और फिर देखिए कितना आनंद आएगा उस संवाद में।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। भोपाल के चर्चित ट्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए लौटते हैं सुरमई सवेरा के सफर की ओर।

सुन जरा। जी हाँ दोस्तों, सुनना भी एक कला है, आप जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपनी बात कह देना चाहते हैं, अगले की सुनना नहीं चाहते। लेकिन उचित तो ये होता है कि जब हम अपनी बात कहें तो उसके प्रत्युत्तर में अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो उसका उत्तर भी सुने, उसकी बात भी आपके ध्यान में होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन होता ये है कि हम अपनी बात कहकर लंबी सांस ले लेते हैं, चैन पा जाते हैं और अगले की कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी बात भी कहें और सामने वाले की मन की भी सुनें।

श्रोताओं, आपसे एक और महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे। कहना ये है कि आप पानी की जो बचत है उस पर ध्यान दीजिए। इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी जितना हो उतना ही इस्तेमाल करें। पेड़ में पानी डालते समय भी ध्यान रखें कि आप मग्घे से पानी डालें, पाइप लगा कर यूं ही वेस्ट ना होने दें पानी को। और पक्षियों के लिए भी पानी रखें। परिंदे आपके आंगन में आए तो उन्हें अपना सूखा गला तर करने के लिए पानी ज़रूर मिले। रहीमदास जी ने कहा है ना, आप जानते हैं ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो भाई पानी को हमें सहेजना है और पानी को अपनी जिंदगानी बनाए रखना है और ये ध्यान देना है कि ये जिंदगानी सूखी ना होने पाए पानी के बिना।

इसी गीत के साथ सुरमई सवेरा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार तिवारी के गाए भजन।

आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार तिवारी के गाए भजन

0: राजकुमार तिवारी के गाए इस भजन के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय को शामिल करते हैं जो हफ्ते की सुर्खियों में रहता है, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। किसी भी लोकतांत्रिक देश की यात्रा में 12 साल का समय एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पीछे मुड़कर नीतियों के परिणामों को और आगे देखकर भविष्य के पदचिन्हों

0: को साफ साफ रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव, कड़े और ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक सुधारों की नई बयार और वैश्विक पटल पर भारत की एक नई धमक को देखा है। इस यात्रा के कई आयाम हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा जी। सर, आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: जी, बहुत धन्यवाद आपको।
0: तो आइए बिना किसी देरी के इस सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे है, UPI आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
1: देखिए, निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेष कर अपन बात कर रहे हैं कल UPI आप देखें गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है या और कोई ख़रीदारी करनी। इवन आप छोटे, जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं, उनके पास भी UPI रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ। और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी, जनधन, उज्ज्वला योजना, PM किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की जिंदगी सच में बेहतर की है?
2: देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो वो 15 पैसे मिलता है। लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की योजना थी और गरीब व्यक्ति को व्यवस्था के साथ जोड़ करके और जो सुविधाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की वो देने की एक बड़ी योजना जनधन खातों के रूप में हुई
0: जी।
2: और ये कह सकते हैं कि 55 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, जिसका आज हम देख रहे हैं कि किसी भी योजना का सीधा खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, उस आधार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना इतनी लाभकारी हुई है कि उन्हें इमीडिएट लाभ देना होता है तो उसके माध्यम से सरकार पहले ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। और आयुष्मान योजना ने तो जो बीमार और गरीब, तो जो गरीब बीमारी के नाम पर अपने घर बार को बेच करके, ज़मीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा दे करके ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो सामान्यतया लोगों के बीच में खड़े होने जैसी स्थिति में है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है ये जो ज़मीन बेचकर इलाज कराने वाली प्रथा थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी। इसी प्रकार से जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। और जो हम जंगल कटते हुए सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा करते थे और लाने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से जो लाभ मिला है उसने महिलाओं की जीवन स्तर को बदला, बीमारी से उनको मुक्ति मिली, आंखों से धुआं का जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो न केवल ज़मीन पर उतर रही हैं बल्कि भारत के नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिल रहा है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक कानून को लाना, इन्हें देश की एकता और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है और देश की एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में काफ़ी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। ज़मीन पर इनका असर आपको किस प्रकार से दिखता है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा 370 को हटाना एक इतिहास की धारा को जोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, क्योंकि ये निर्णय करने की हिम्मत किसी में नहीं थी
0: जी।
1: इससे जम्मू कश्मीर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखंडता का ताना बाना मजबूत हुआ है
0: जी।
1: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति इसके तहत

0: आप देखिए जम्मू कश्मीर कभी आप जाते थे तो कहीं यहाँ घटनाएं हो रही, लेकिन जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति थी धारा 370 के बाद वो पूरी तरह से लागू हुई और आतंकवाद अब आप कहीं सुनने को नहीं मिलता
1: जी।
0: तो ये जो हुआ है निश्चित रूप से ऐतिहासिक। इसीलिए देखिए आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद विकास की ओर दौड़ लगा रहा है और देश की मूल धारा में जुड़ गया है। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वो नहीं रहा है
1: जी।
0: इसी तरह आप तीन तलाक की बात करें, तीन तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो तीन बार तलाक तलाक बोल के उनको घर से हटा दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो तीन तलाक है निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हो रही, नहीं तो कोई भी आप बताइए तीन बार तलाक तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से, उनको ये नहीं देखते थे कि उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती है या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था, ऐसा लगता था जैसे अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है। लेकिन तीन तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए वो कहती हैं तीन तलाक ने हमें नई ज़िंदगी दी है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहाँ हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है। अगर हम CAA की बात करें, पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को, इस कानून की भावना और उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, CAA कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था
1: जी,
2: और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का वो निरंतर घटा है, इसी से ये लगा कि वहाँ प्रताड़ना होगी। तो उस समय आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में CAA कानून लाकर जो तीन देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू, ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है CAA का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरसता के लिए और भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, इसलिए इन समुदाय, इस धर्म को मानने वाले समुदायों के साथ कहीं भी प्रताड़ना होगी तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे। और भारत में ऐसे कानून बना करके, हालांकि इस कानून में केवल तीन देशों का उल्लेख है, लेकिन अन्य देशों के जो सनातन मानने वाले या हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ रास्ता खुला है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के कानून जो हैं वो सामाजिक समरसता के लिए और अन्य राष्ट्रों में प्रताड़ित हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों, आप भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना जैसी बातें सामने नहीं आ रही
1: जी।
2: अतिरेक में जरूर कहते हुए सब हमें सुन जाएंगे, लेकिन उनको स्वतंत्रता है और उन्हें सारे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे देश में सब प्रकार के मानवाधिकार उपयोग करने के लिए अल्पसंख्यकों को छूट है, तो इसलिए इस CAA का बहुत महत्व था। और मोदी सरकार ने जो, जिसको कह सकते हैं

0: कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जा कर के निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम हैं, वो कानून हैं, तीन तलाक जैसे कह सकते हैं, CAA कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का। तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है, सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है। और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि CAA सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। मृगेन जी, आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं?
2: देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था
1: जी।
2: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को अस्थायी रूप से 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1,00,000 रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएं चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बना के। और इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है। आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ न कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगी। तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SSG से जुड़ी महिलाएँ हर महीने 10 से लेकर 20,000 रुपये महीने तक कमा रही, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया है, इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अभी तो सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश के कूनों को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है, वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है। और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो ला करके छोड़े गए हैं, इनसे भी हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ में जो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो जो हाइड्रोजन मिशन बनाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, या सोलर रूफ टॉप जो मामला है जिसके तहत PM सूर्य गृह योजना जो है, घर योजना है, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार और बेहतर हम पर्यावरण को बना सकते हैं, क्योंकि जब आज हम देख रहे हैं तो जो ये भीषण गर्मी है ये पर्यावरण असंतुलन के कारण सबसे ज़्यादा है। और वृक्षों का कम हो जाना, मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ घने जंगलों की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी चूंकि गर्मी है तो ये समझने की चीज़ है कि जिस तरीके से अब चीता प्रोजेक्ट आया है या अन्य पशु

0: और पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए, फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, वृक्षों को नमी मिलती रहे इसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, तो ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए आने वाले समय के लिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबा इसका वो रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि किसी एक विषय को चुनते हैं तब भी, और यदि समग्र विषयों को देखते हैं तब भी, सभी क्षेत्रों में काम करती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा चीता प्रोजेक्ट जिसका आपने उल्लेख किया, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर सरकार व्यक्तिगत रूप से क्या सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सोचा गया। इसका अभिप्राय ये है कि समग्र दृष्टिकोण से कैसे भारत के अंदर विकास हो सके, जिसे समग्र विकास कहा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। और उसी समग्र दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। वैश्विक छवि की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में, वो एक अलग ही रूप में अब दिखाई पड़ती है। मृगेन जी, आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफ़ी बढ़ी है, तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है?
2: देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वो पूरी दुनिया मान चुकी है। अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो अब G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिए विश्व का कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा सकता, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है, या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा, बात कर रहे हैं वैक्सीन की बात हो रही, अब कोरोना की वैक्सीन, सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। बताओ, जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए वर्षों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। 6 महीने के अंदर तो ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था, जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश से जहाँ फैला हुआ था उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छवि बनी है, निश्चित रूप से इस छवि के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है। अब मदद के लिए भारत कभी किसी के सिक्के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया। अब देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने।
1: आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं, रोजगार और विनिर्माण के मामले में ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नज़र आता है, सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का। और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है, उस टेक्नोलॉजी को आप तेज़ी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूँ कि कि आरआर

0: इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो, आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं। और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है
1: जी।
0: इसका सीधे अभिप्राय यह है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की

0: भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा, और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है। मृगेन जी आपसे है, नोटबंदी और GST के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नज़रिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है।
2: 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू। उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, इससे जो काला धन था
1: जी
2: वो देश में समाप्त हो गया था। क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर दो के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ हैं रखे, किसी के गद्दे के नीचे हैं, किसी तक की तकिया के नीचे पड़े हुए हैं, बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, और इससे भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा था। चीज़ और भी हुआ था, महंगाई विशेषकर जो नंबर दो के पैसे लोग लगाते थे जमीन वगैरह के लिए, उससे महंगाई भी काफ़ी कम हुई थी, ज़मीनों के रेट काफ़ी गिरे थे। उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जो पैसों का ये था कि नकदीकरण वो बहुत कम हुआ है, और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके डिजिटाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और देखिए उसके बाद जो आर्थिक सुधार GST निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा NDA से अलग दल थे, सब ने विरोध किया, लेकिन अंत में जब उसके फायदा देखा लोगों ने, उसको माना, और उससे जो GST से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ उससे बढ़ा भी जो टैक्स बढ़ा, चोरी कम हुई, और साथ ही जब चोरी कम होगी देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा, जनता की लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी हमारी, और जो आप करें अर्थसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधाएं, ये सब इसी के लिए। तो GST ने एक बड़ा ऐसी चीज़ किया जिससे, अच्छा दूसरा इससे फ़ायदा ये है आप कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स है, कहीं 7% है, कहीं 15% है, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही एक देश एक टैक्स का, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। अब पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद से सब आपको एक रेट पर मिलेगा, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है देश के लिए, और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 जून की रोटी नहीं मिली है, और ये सब आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी बात हुई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेश दूसरे देशों के लोग, जो पड़ोसी देश हैं, वहां के लोग भी हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं, एक सस्ता और बहुत ही सुलभ इलाज यहां पर मिलता है। सुरेश जी, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से 3रे स्थान की तरफ बढ़ रहा है, इस आर्थिक यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है
1: जी।
0: मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज़्यादा होता है, समर्थन कम होता है
1: जी।
0: भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी, और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया, और आर्थिक सुधारों के साथ और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है,
1: जी।
0: आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशंस को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से। और फिर आप जो है

0: जो ये आजकल एक्सप्रेसवे बने हैं इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो, फिर आप हमारे जो उत्पादन है उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है
1: जी।
0: तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर है लेकिन गरीबी की रेखा के का प्रतिशत आपके पांचवी अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता, इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से बाहर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक जिले में एक प्रोडक्ट लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है, क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं, जब टैरिफ का वार आया भारत नहीं ला, जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई, तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आपने विकसित भारत 2047 की बात की, अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी, आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र

देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16,68,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, DAP, NPK, SSP और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख था हरीश कुमार का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों का अपना कार्यक्रम महिला संसार।

सच्चा जीवन साथी वही है जो हर सुख दुख में साथ दे। आप सभी सखियों का स्वागत करती हूँ आज के महिला संसार कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए आपके रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे का नमस्कार। सखियों, आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन यानी 3 जून पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन आवागमन के उस शानदार साधन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि हमारी सेहत और फिटनेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आसपास जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करके हम ईंधन और पैसे भी बचा सकते हैं, साथ ही

पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों, साइकिल चलाने के बहुत फायदे हैं। प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा भी कम होता है। साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। लगातार साइकिल चलाने से घुटने और जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को राहत मिलती है। एक रिसर्च बताती है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 30 मिनट साइकिल चलाता है, उसका दिमाग साधारण इंसान की तुलना में ज़्यादा एक्टिव रहता है। ब्रेन पावर बढ़ने के चांसेस भी 15 से 20% होते हैं। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ पैसे और ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। सखियों, आज है बुधवार और आप सभी जानती ही हैं कि आज हम आपको शीर्षक गीत सुनवाते हैं। आज का हमारा शीर्षक है जीवन साथी। चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के पहले गीत का।

सखियों, आज की महंगाई के दौर में बेहद ज़रूरी हो गया है हम लोगों के लिए काम करना और घर के खर्चों में हाथ बटाना। हम में से कुछ सखियों ने नौकरी का रास्ता चुना तो कुछ ने बिजनेस का, पर देखने में आ रहा है कि कई बार हम सखियां घर परिवार और अपने काम के बीच संतुलन नहीं बना पाती। कभी रिश्ते उलझ जाते हैं तो कभी प्रोफेशनल लाइफ। बिगड़ते और उलझते रिश्तों की एक सबसे बड़ी वजह है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस की कमी। यदि यह बैलेंस या संतुलन हो तो जीवन खुशहाल हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सीमाएं तय करें। ऑफिस का काम घर के समय में ना करें। यदि ज़रूरी है तो निश्चित समय तय करें। काम के हिसाब से हमें प्राथमिकता पहचानना भी ज़रूरी है। हर काम तुरंत करें यह ज़रूरी नहीं होता। अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करें और तय करें कि किस समय काम करना है और किस समय को परिवार के साथ बिताना है। हम सभी सखियों को खुद के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, अपनी हॉबी के लिए या एक्सरसाइज के लिए या आराम के लिए। खुद को दिन के 30 मिनट ज़रूर दें। खुद को रिचार्ज करना इस तरह बहुत ज़रूरी है। सखियों, घर और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना तब और आसान हो जाता है जब जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी मिल जाता है। चलिए फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सखियों, जीवन साथी वह होता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा होता है। वह आपके दुख, खुशी और लक्ष्य को समझकर जीवन भर आपका साथ निभाता है। एक आदर्श जीवन साथी में आपसी समझ और विश्वास का होना बेहद जरूरी है। जीवन साथी जब हमारी भावनाओं और निर्णयों का सम्मान करता है, तब जीवन जीना और आसान हो जाता है। एक अच्छा जीवन साथी जिंदगी में गमों को आधा और खुशियों को दोगुना कर देता है। भारतीय संस्कृति में जीवन साथी के चुनाव को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना गया है। जीवन के मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने का गुण जिसमें होता है, वही होता है सच्चा जीवन साथी।

0: सखियों, अब बारी है व्यंजन विधि की। आज आपके साथ साझा कर रही हूँ केक बनाने की रेसिपी। केक बनाने के लिए एक कटोरी दूध पाउडर, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी मलाई और एक कटोरी मैदा या आटा भी ले सकते हैं। इसमें दो छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच सोडा मिलाएं। पूरा मिश्रण दूध के साथ अच्छे से मिलाएं। वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालें। बेकिंग के लिए माइक्रोवेव या कुकर, जिसका भी आप इस्तेमाल कर रही हैं, उसे प्री हीट करें। केक के मिश्रण को घी या तेल से ग्रीस किए हुए पैन में डालें। स्लो मीडियम आंच में 40 से 45 मिनट बेक करें। लीजिए, स्वादिष्ट केक बनकर तैयार है। इसे अपने जीवन साथी को खिलाइए और आपसी रिश्तों में मिठास भी घोलिए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।
1: ये क्या? लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: शोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। यह एक छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की। एक सच्चा जीवन साथी जीवन में रंग भर देता है, जीवन को खुशहाल कर देता है। सखियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? पत्र लिखकर हमें ज़रूर बताइए। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम महिला संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। घड़ी की सुइयों का इशारा समझते हुए कार्यक्रम को समेटने की अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे को। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला संसार। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश प्रेम का विचित्र वीणावादन। राग है बसंत मुखारी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। आज आपने सुना रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन, राग था बसंत मुखारी। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ने यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई माह में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपये रही है। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित राष्ट्रीय महत्व के 13 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष सर्वाधिक 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य पर 13,42,000 किसानों द्वारा गेहूं का विक्रय किया गया, जो कि गेहूं विक्रय करने वाले किसान संख्या की दृष्टि से पूरे भारत में सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो संगिनी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और स्टडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
3: नमस्कार,
2: स्वागत है आपका हमारे फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद दीदी। मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास मध्य प्रदेश से।
2: राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपके कॉल भी बहुत लगते हैं आकाशवाणी में।
3: क्यों, बहुत कहाँ, हफ्ते भर पिछले मंगलवार को लगाया था जिसका आज लगा रहा हूँ दीदी।
2: चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने पिछले ट्यूसडे को आपकी बात हुई थी और वेडनेसडे को भी देखा था मैंने आपका नाम, इसीलिए
3: नहीं लगाया।
2: चलिए कोई बात नहीं,
3: कोई दूसरा नाम से
2: ठीक ठीक हाँ हो सकता है।
3: बरोबर हफ्ते भर में ही लगाया दीदी।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है राजेश जी, क्योंकि यदि कोई भी श्रोता एक हफ्ते के पहले कॉल लगाता है और हम उससे बात कर भी लेते हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं कि एक हफ्ते के बीच में उसकी बात हो चुकी है तो हम उसका कॉल फिर प्रोग्राम में नहीं ले पाते, बस इतनी सी बात है।
3: हाँ, कई श्रोताओं ने लगाते है। खास तो हमारी शिकायत ये है कि दीदी ये जो लेटर का कार्यक्रम हो रहा है फरमाइश का,
2: हाँ
3: उसमें पत्र बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, छाट के जैसे वो क्या वही गड्डी एक की गड्डी रोज वही
2: नहीं नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतने हमारे श्रोताओं की गिनती नहीं है, तो वो तो जो जैसे हाथ में आते जाते हैं वैसे ही लेटर्स पढ़ते हैं और एक ही गड्डी नहीं पड़ी जाती है, बहुत सारे। आप कभी आकाशवाणी आएंगे?
3: नहीं, हम तो होके गए।

0: जैसे अभी अक्टूबर में आए थे, जैसे स्थापना दिवस है,
1: अच्छा अच्छा
0: आपको
1: अच्छा
0: मालूम नहीं हो भले ही, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही तिलक राणा डोमन ठाकुर, ये जो दो चार नाम रटे हुए रोज के रोज, वही
1: नहीं नहीं
0: वही
1: रटे नहीं
0: जीत
1: है वो, ये होता है कि एक ही श्रोता कई बार है ना 50-50 कार्ड डाल देता है,
0: रहा
1: तो
0: है।
1: उसका
0: नहीं तो
1: नंबर
0: वही वो
1: रोटेशन में
0: जा,
1: आता जाता है।
0: बाकी जैसे ये इंदौर के देवास के यहाँ के भी तो लेना चाहिए ना, भले ही वो डाले हजार
1: बिल्कुल
0: डाले,
1: बिल्कुल,
0: बाकी हमारा
1: चलिए
0: क्या होएगा फिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात
0: हाँ
1: पे बिल्कुल चर्चा करेंगे और आपका कॉल लिया जाएगा। अभी तो आप ही
0: हाँ
1: बताइए, फोन करें, गीत सुनने में आपने कॉल किया है, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: ये दीदी, आज जैसे सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही है,
1: हाँ हाँ
0: जैसे कल ही परसों उनका निधन हो गया
1: बिल्कुल
0: है, तो
1: जी,
0: उनकी याद में जैसे गीत ये पहचान पिक्चर का सुनवा दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊं, या फिर आया ना तुमको प्यार जताना, ऐसा गीत है मुकेश जी के साथ है उनमें गीत,
1: पहचान फिल्म का यह
0: पहचान पिक्चर
1: ओ परी
0: है? हाँ
1: का,
0: वाला ले लीजिए, या फिर मुकेश जी के साथ में उनका ड्यूएट भी है पहचान
1: हाँ
0: पिक्चर का, उन्हीं का गाया हुआ गीत सुनवा दीजिए, सुमन
1: हाँ अच्छा ठीक है। और
0: कल्याणपुर जी को समर्पित है ये, सेकंड
1: हाँ कौन सा वाला, सेकंड कौन सा बोला है आपने?
0: ये आया ना हमको प्यार जताना, ऐसा
1: अच्छा
0: गीत है।
1: ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ, आपको बिल्कुल ये गीत सुनवाएंगे।
0: ये हमारी बात थोड़ी सी रख देना मैनेजमेंट के सामने, ये
1: बिल्कुल रखेंगे,
0: लेटर के बारे में, आरजे लेटर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक एक एक गीत पे एक ही लेटर लेते हैं वो।
1: चलिए बिल्कुल हम बात करेंगे इस विषय पे। राजेश जी
0: हाँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में होंगे। जिस
0: धन्यवाद।
1: तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा ही लेटर्स में भी हो जाता है। ठीक
0: हाँ
1: है, चलिए
0: यूँ
1: नमस्कार
0: धन्यवाद दीदी।
1: जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते। मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे। संगीता
0: छतरपुर से सुनीता पटेल, अनीता,
1: जी, संगीता
0: संगीता।
1: जी मैम
0: चलिए संगीता, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी, है ना?
1: जी, आप कविता मैम बोल रहे
0: हाँ
1: हैं
0: जी।
1: जी?
0: और कैसी हो संगीता?
1: जी ठीक है। आज
0: और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो?
1: सुनना चाहते हैं करण अर्जुन फिल्म का,
0: अच्छा, कौन सा वाला गीत इसका?
1: बंधन, दिलों का बंधन।
0: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है ये। बंधन तो
1: मैम,
0: प्यार का बंधन
1: आपके यहाँ
0: है।
1: मौसम कैसा है?
0: मौसम में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है ऐसा कह सकते हैं, बारिश बारिश हो
1: जी
0: जा रही है बीच बीच में, आंधी
1: मैम, यहाँ भी
0: तूफान।
1: थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पानी 2-3 दिन बरसा है। जी
0: हाँ, और आंधी तूफान टाइप बहुत मौसम ऐसा हुआ है
1: जी
0: ना।
1: दोनों साथ में एक आए हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो
1: जी
0: संगीता
1: मैम।
0: जी, कल के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है?
1: जी
0: कॉल करने के
1: जी
0: लिए धन्यवाद।
1: जी जी थैंक यू मैम।
0: ओके।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आप शिव नारायण तिवारी जी बोल रहे
1: जी मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहचाना आपने।
0: हैं जिस तरह से हमें श्रोता पहचान जाते हैं आवाज से, कई बार हम लोग भी है ना अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लगते हैं।
1: मैम मालूम चल गया था कि आप आज प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में हैं।
0: अच्छा, ऐसा है? अरे वाह, क्या बात है।
1: हाँ, तो
0: और
1: मैंने
0: क्या
1: किया
0: हाल है
1: लगा
0: आप
1: लिया
0: सभी के? हाल
1: जी।
0: कैसे हैं आप सभी के?
1: बढ़िया है हाल मैम, बहुत बढ़िया। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
0: हाँ, हल्की सी कम हुई है।
1: काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काज बढ़िया चल रहा है, कथा वार्ता पूजा होती रहती है, पंडिताई चलती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा बताइए शिवनारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आप सुनवाए आज नंदिनी को डेडिकेट और रानू गुप्ता जी को, आपको
0: हाँ,
1: भी।
0: थैंक यू।
1: आज का गीत है वो है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसका कौन सा गीत?
1: तुमसे बना मेरा जीवन जी,
0: बहुत अच्छा गीत है तो, और मिल भी गया है हमें तो, ये हम आपको जरूर सुनाएंगे।
1: जी
0: ठीक है, चलिए तो फिर कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी
1: जी
0: पसंद का गीत। थैंक यू,
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। अरे
0: कौन है ये इतनी बार नमस्ते करने वाले हमारे श्रोता?
1: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल। फूलचंद जी, आपने बहुत टाइम बाद बात की है हमसे।
1: लगता है कविता मैडम बोल रही हैं आप।
0: जी हाँ बहुत पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं कविता जी आपसे बात करने को तड़प रहा था।
0: सच
1: सच में बिल्कुल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं कविता जी से, कैसे बात होगी, कब आप कविता जी का नंबर लगेगा, कब मेरी बात हो जाएगी, और आज मेरा ही सुन लिया।
0: देखिए, इतना अच्छा तो कुछ अच्छा अच्छा सोचा होता ना, इतनी सी बात में ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
1: कविता जी, वाकई में जो है आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: सुनाइए, मौसम कैसा है छतरपुर का?
1: कविता जी, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही लुक्का छुपा वाला मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल छुप जाते हैं, कभी बादल फिर आ जाते हैं, और दोपहर में थोड़ा गर्मी होती है और शाम सुबह ठंडी होने लगती है।
0: बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है शाम को तो।
1: जी, और कुछ पानी यानी हमारे यहाँ छतरपुर जिले में गिर गया है, और खजुराहो का भी मौसम नज़ारा बहुत ही गलत गजब है। अब तो आपका घूमने का मौका आ गया है।
0: अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जून लास्ट वीक में पक्का प्लान करेंगे हम खजुराहो आने का।
1: जी, बिल्कुल, खजुराहो के मंदिर आपको बुला रहे हैं कि कविता जी आइए आइए, आप हम जो है, और आप जल्दी ही आएंगी लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फुलचंद जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल कविता जी, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी,
0: अच्छा ये क्या बात है, आज
1: और
0: तो है ना ये।
1: गीत गीत
0: हाँ,
1: के बोल है कि पास पास वो आने लगे जरा जरा।
0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
1: जी,
0: हाँ जी, मिल गया हमको ये गीत तो, बहुत
1: और
0: अच्छा है।
1: ये गीत कविता जी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं,
0: हाँ
1: और विजय कुमार पांडे जी हैं, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और पूनम बहन है हमारी कानपुर से, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट रहेगा, क्योंकि रेडियो से हमारे इतने सारी बहनें, इतने सारे मित्र मिल गए हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतने
0: बिल्कुल
1: कहाँ
0: सही बात
1: मिलेंगे।
0: है, वाकई एक बहुत अच्छा
1: जी
0: परिवार है हमारा रेडियो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल, और देखिए कि कविता जी, रेडियो श्रोता जो बनता है वो बहुत ही दिलदार होता है जब बन पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है ये। चलिए, कॉल
1: जी,
0: करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनका कॉल लगे। ठीक है
1: बिल्कुल, सभी
0: जी
1: श्रोताओं का
0: फुलचंद
1: फोन
0: जी,
1: लगे। बहुत
0: जी
1: बहुत कविता
0: जी
1: जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
0: जी आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: जिला सीनी ग्राम पातर फोड़ी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था। ध्रुवे,
0: राहुल धुर्वे।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी राहुल, बताइए कैसे हैं आप।
1: अभी तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब पानी भी गिरा है कल, तो थोड़ा सा ठंडक है जरूर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले काफी गर्मी थी।
0: अरे भाई, हमने तो मौसम के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपके बारे में पूछा है, आप कैसे
1: हम भी अच्छे हैं मैम अभी तो।
0: हैं चलिए, क्या काम
1: और
0: करते हैं
1: आप?
0: राहुल जी
1: हाँ जी,
0: अभी, आप काम क्या करते हैं।
1: मैं वीडियो कॉल डीटीएच के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज।
1: जाने अनजाने मूवी का है, हाँ,
0: जाने अनजाने,
1: पिया पिया वो पिया पिया।
0: एक मिनट हम सर्च कर लें पहले, है कि नहीं। जाने अनजाने, मिल गया, लेकिन इसमें पिया पिया वाला गाना तो नहीं दिख रहा है मुझे।
1: हाँ मैम,
0: आप कोई और उसका कोई बोल जो शुरू के है ना, वो कुछ और होगा।
1: नहीं, प्रिया प्रिया तू चांद है पूनम का।
0: चलिए मैं एक बार और देखूंगी, नहीं है यहाँ पर उसका। जाने अनजाने जरूर उसकी शुरुआत क्या जाने अनजाने से है क्या।
1: नहीं, प्रिया प्रिया हो
0: छम
1: प्रिया
0: छम
1: प्रिया,
0: बजे रे पाया लिया उससे है।
1: नहीं,
0: अच्छा, तेरी नीली नीली आंखों के,
1: चांद है पूनम का, ऐसा
0: चलिए
1: है कुछ
0: अच्छा
1: भी थी।
0: मैं देखती हूँ। जाने अनजाने फिल्म का पिया पिया,
1: हाँ,
0: यदि
1: पिया
0: ये गीत
1: पिया हो
0: नहीं
1: पिया
0: मिला
1: पिया तू चांद है पूनम का,
0: ठीक है, और अगर ये गीत नहीं मिला तो फिर कौन सा गीत सुनेंगे आप।
1: इसमें आप मतलब
0: इसी फिल्म
1: साजन का घर
0: का,
1: का कर दीजिए। हाँ,
0: साजन के घर का, उसका कौन सा गीत।
1: इसका नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर।

0: चलिए, गाने तो आपने बहुत ही अच्छे चॉइस किए। ठीक
1: मैम,
0: है,
1: मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ कहिए।
1: इसमें मैंने मतलब इससे पहले 15 दिन पहले कॉल किया था तो मेरा नाम ही नहीं आ पाया था इससे।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, श्रोता हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, उनके कॉल्स हम लोग ले लेते हैं, और जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ 58 मिनट का ये प्रोग्राम तैयार करना होता है, तो कुछ कॉलर्स हमारे छूट जाते हैं इस चक्कर में।
1: तो मैम, मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ
1: अगर मान लीजिए कॉल अगर ज्यादा 11 बजे तक, जैसे 10:30 से 11 तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप,
0: जी,
1: तो गानों को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं उनको तो मतलब शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर हो पाता है।
0: चलिए कोशिश करेंगे आपकी कही बात पे अमल किया जाए। ठीक है राहुल जी,
1: हाँ जी, दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, फटाफट ले लीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश सागर से 3 कटारे और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: चलिए, धन्यवाद राहुल जी कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी। राजू,
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओके,
1: लवानिया
0: राजू लवानिया जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन आज इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है?
1: दीदी, मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है। हल्के बादल हैं, रात को बारिश हुई है, बिजली चमकी है, बिजली कड़की है, तो थोड़ा मौसम का
0: चलिए
1: जी।
0: ठीक है। क्या हाल है राजू जी आपके?
1: हम तो ठीक है दीदी, और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी भोपाल टीम कैसी है।
0: हमारी टीम बहुत बढ़िया है, आप सबका स्नेह हमारी टीम के साथ है तो अच्छी ही होगी।
1: बिल्कुल दीदी, हमारी भी यही कामना है, आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें, ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी सुनने को मिले, और आप सब लोग ऐसे ही मस्त मस्त बने रहें, सभी लोग
0: चलिए,
1: फिट और
0: बहुत बहुत
1: फिट।
0: आभार आपका राजू जी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए। और बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी, सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं।
0: बिल्कुल, तो उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी और सभी श्रोताओं की तरफ से भी और
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम की तरफ से
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: उन्हें भावभीनी
0: धन्यवाद, आपने
1: श्रद्धांजलि
0: बहुत
1: देते
0: अच्छा
1: हुए
0: सोचा
1: उन्हें
0: है।
1: याद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा।
1: ओके दीदी,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम। गाना
0: नमस्ते। हाँ,
1: सुनना है मैडम?
0: नाम तो बताइए। हसीना
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। अमीना
0: भी मंसूरी।
1: अमीना
0: अमीना,
1: जी मैडम, उस दिन में लगाया है मैंने। अच्छी
0: अच्छा। हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: हूँ मैडम, अब तो आपकी दुआ है।
0: इंदौर से बोल रही हैं ना?
1: हाँ, इंदौर से बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। बहुत दिन में
0: चलिए,
1: लगाया मैडम, थोड़ी तबीयत ऐसी थी मेरी।
0: क्यों, क्या हो गया था आपको?
1: अरे मेरे को ये थोड़ा सा जी लग रहा था, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो एकदम से उल्टी होने लगी तो भर्ती कर दिया था अस्पताल में। तो अब तो
0: ओहो,
1: आराम है मैडम, बहुत आराम है अब तो।
0: चलिए, लेकिन रेगुलर अपना ध्यान रखा करिए और बीपी की दवाई टाइम से खाया करिए।
1: जी मैडम, गोली तो खाती हूँ, मतलब थोड़ा कमजोरी हो गई थी ना।
0: हाँ, चलिए, आप पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, यही हम सबकी दुआएं हैं, ठीक है?
1: जी मैडम,
0: चलिए, अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म इज्जत गाने के बोल, क्या
0: हाँ,
1: मिलना है ऐसे लोगों से जिनकी,
0: अच्छा
1: हाँ जिनकी फितरत छुपी रहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल, अवश्य जरूर सुनवाएंगे ये गीत हम आपको। और अगर ये गीत ना मिला तो
1: मैडम,
0: क्या
1: आपकी आवाज
0: मिलना?
1: बिल्कुल धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल सुन पा रही
0: हाँ,
1: हूँ।
0: सही कह रही हैं आप, आवाज़ बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है अमीना जी, थैंक यू। कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा।
1: जी मैडम, थैंक
0: नमस्ते।
1: यू मैडम, आपको भी
0: ओके।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: मैं वरेला से वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ।
0: मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी सुनी है।
1: हाँ अमिता दीदी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों बाद आई आप।
0: देखो वंदना जी, फिर आपको गलतफहमी हो गई। जी
1: फिर कविता दीदी बोल रही ना,
0: हाँ।
1: आपसे बात हुई थी मेरी कविता दीदी।
0: बिल्कुल, वो तब भी आप ऐसी कंफ्यूज हुई थी। तो
1: हाँ, बिल्कुल देखा। उसके बाद आज लगा रही हूँ मैं फोन। अरे
0: आप ये बताओ, आपको अमिता दीदी में और कविता दीदी में फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आवाज क्या है दीदी, स्लो आती है इसमें, और जब रेडियो पे सुनते हैं तो क्लियर आवाज आती थोड़ी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ
0: चक्कर है, चलो कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, बताओ आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?

0: आज गाना सुना दी, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी
1: अच्छा,
0: चोरी मेरे दिल में समाते हो।
1: कौन सी फिल्म का है ये गाना?
0: गाना
1: खैर,
0: इतना
1: मिल
0: गाना
1: जाएगा,
0: सुनी है दीदी आज, तो
1: मिल
0: दूसरा बता
1: जाएगा।
0: दूँ? मिल
1: हाँ, दूसरा भी बता दो, वैसे ये गाना भी मिल जाएगा। हाँ,
0: जाएगा
1: लेकिन एक और बता दो
0: दूसरा।
1: फिर
0: फिर
1: भी।
0: वो कौन सा है, तू गैरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
1: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने।
0: सिंपल से
1: से
0: बता दो कोई।
1: नहीं, सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना
0: मैं
1: चाहिए।
0: सोचती हूँ ये वाला गाना नहीं सुना, अभी रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने, तो
1: हाँ, तो
0: मुझे
1: आपने
0: तो
1: नोट
0: बहुत
1: कर लिया
0: पुराने
1: कि आप
0: पुराने गाने भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है एक गाना,
1: हाँ?
0: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी। बहुत
1: ओ
0: अच्छा लगता है मुझे वो रूही रू। और भी
1: हाँ,
0: पुराने पुराने गाने, मैंने एक दिन वो फरीद उसका कौन है वो गायिका,
1: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया है, गैरों पे करम।
0: गैर पे करम नहीं,

0: तो हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
1: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने कब से।
0: कोई
1: नहीं नहीं सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना
0: सोचती
1: चाहिए।
0: हूँ ये वाला गाना नहीं सुना। अभी रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने, तो
1: हाँ तो
0: मुझे
1: आपने
0: तो
1: नोट
0: बहुत
1: कर लिया
0: पुराने
1: क्या?
0: पुराने गाने भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है एक गाना,
1: हाँ?
0: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी वो
1: ओ
0: बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो रूही रू। और भी
1: हाँ
0: पुराने पुराने गाने मैंने एक दिन वो खरीद उसका कौन है वो गायिका,
1: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया, गैरों पे करम।
0: गैर पे करम नहीं,
1: हाँ
0: तू हमारी थी जान से प्यारी थी तू औरों की क्यों हो गई।
1: किसकी आवाज में है ये भी नहीं
0: ये
1: पता।
0: वो हीरो है जॉय मुखर्जी की, कौन है उनकी पिक्चर का गाना है शायद।
1: कोशिश करते
0: और
1: हैं।
0: अच्छा से अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ जल्दी मिल जाए। जो कौन सा बता दूँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा।
1: देखो
0: अभी तो
1: वैसे
0: आप
1: तो
0: अच्छे
1: आपका
0: अंदर
1: ये
0: सुना
1: पहले
0: दीजिए,
1: गीत
0: फिर
1: मिल जाएगा,
0: आपको
1: जहां
0: सही
1: मैं
0: लगेगा।
1: जाती हूँ वहीं चले
0: वहीं
1: आते
0: चले
1: हो।
0: आते हो, चोरी चोरी दीदी आप
1: चलो
0: एकदम
1: टेंशन नहीं लो, मिलेगा
0: मिलेगा
1: यही
0: तो आप
1: गाना
0: लोग आ
1: मिलेगा
0: गए शॉर्टिंग के प्रोग्राम
1: अपन ढूंढ के लाएंगे।
0: आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देते। कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल तो मैं फोन करेंगी, कल का सुन नहीं पाई, तो मेंटेनेंस चल रहा, तो बिल्कुल मुझे बहुत लगा कि
1: तो
0: इन्वर्टर भी
1: आप है
0: बंद
1: ना,
0: हो गया
1: न्यूज़
0: था, वो
1: न्यूज़
0: एसी
1: ऑन
0: भी नहीं
1: एआईआर
0: लगा।
1: एप्लीकेशन पर नहीं सुनते क्या मोबाइल पर?
0: मोबाइल में दीदी हम डाउनलोड कर हो ही नहीं पा रहा मेरे मोबाइल में, कैसे करते वो, मैंने कई
1: अरे
0: बार किया नहीं होता।
1: नहीं, डाउनलोड हो
0: अच्छा
1: जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, और फिर उसको है ना सिलेक्ट कर लो, लाइव पर जाकर भोपाल सिलेक्ट कर लो, और बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत क्लियर सुनाई देता
0: ठीक है, मैं आज ही
1: है
0: करवाती
1: ना।
0: हूँ, मैं करती हूँ। प्ले स्टोर में जाके भी किया, पर वो
1: प्ले
0: चला
1: स्टोर
0: गया
1: में
0: मेरा
1: जाके ही
0: बूट।
1: करना पड़ेगा न्यूज़
0: नहीं मैंने
1: ऑन
0: किया
1: एआईआर।
0: नहीं हुआ, मुझे तो
1: अच्छा
0: इतना वो है, जब एक भी अगर मिस हो गया, आज किस किस के गाने आए, बहुत उम्मीद रहती है, तो लगा रहता है पता नहीं जो
1: चलो,
0: प्ले स्टोर
1: एक बार और
0: किसी। जी
1: कोशिश करना, पक्का होगा। ठीक है,
0: नहीं आप कर दे, नमस्ते। और आप
1: नमस्ते।
0: पहचानने में गलती हो गई तो
1: कोई
0: सॉरी
1: बात नहीं, कोई बात
0: अभी
1: नहीं,
0: तो
1: ओके।
0: दीदी क्या है ना, मैं अमिता दीदी से बहुत बात करती हूँ, मतलब जितने बार भी कभी फोन लगाया अमिता दीदी और आप रहती हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियो इसमें मोबाइल में बहुत दबी आवाज आती है।
1: चलो कोई बात नहीं, ओके
0: ठीक है
1: ओके,
0: दीदी
1: थैंक
0: नमस्ते,
1: यू,
0: कल
1: बाय
0: सुनेंगे आप।
1: बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। अब स्थानीय नागरिक स्वयं को गुप्तचर के रूप में पंजीकृत कर वन संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए EKYC कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रमिकों को अपनी लंबित EKYC 1 माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। और भोपाल में 6 और 7 जून को राज्य स्तरीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न आम की किस्मों एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है, इंदिवर के बोल हैं और फिल्म का नाम है रॉयल मेल। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सदस्य भाटापारा दत्तरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है। द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं रॉयल मेल फिल्म का ये गीत।

आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। वसंत देव का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शोभा शारदा दामिनी इस गीत को सुनना चाहती हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगूर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये पत्र हमें लिख भेजा है रुचि और इनके परिवार ने। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी बनियापारा से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर अंगूर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म का वो गीत जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। अयूब खान, इरम, गुड़िया, शोएब, नावेद और जीशान ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया

कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शरद मलिक का, सरदार मलिक का। पसंद आप सब श्रोताओं की, प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, इन्होंने नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि इस गीत को सुनना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंतर मंतर से।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। रुचि शुक्ला, रीना शुक्ला गीत और कृष्णा शुक्ला ने ये गीत पसंद किया है रीवा से। दिल्ली शहर से ये गीत सुनना चाहते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये नगमा।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं।

0: द ट्रेन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे
1: कुछ बात करनी है तुझसे।
2: हाँ बोल।
1: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
2: क्या सुन रही है तू?
1: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
2: हाँ सच सुना है तूने।
1: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
2: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
1: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
2: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोल कर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहाँ मैं चाहूंगी।
1: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
2: तेरा निकाह रसूल से ही होगा और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
1: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
2: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
1: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
2: क्यों, क्या कमी है उसमें?
1: तू खूब जानती है अम्मी उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
2: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
1: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
2: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
1: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
2: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है।
1: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
2: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
1: अम्मी,
2: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अरे अरे, क्या सोच रही है? खाना दे।
1: हाँ लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस
0: कुछ नहीं?

0: अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से, ऐसे क्या देख रही है मुझे, चल।

0: अब्बू अब्बू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा? बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि 1 महीने में आ जाएगा।
2: सारा है? सारा है?
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय, साराय,
0: आती हूँ।
2: साराय, साराय,
0: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
0: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
0: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
0: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
0: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
2: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूं। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
0: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
2: अभी बताता हूं तुझे।
0: रसूल।

0: चाय।
1: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहा ना रहने दो।
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
1: मन नहीं है।
0: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
0: अरे तुम बेकार की बातें सोचकर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
1: अरे सारे को देखो।
0: क्या हुआ है सारे को, अच्छी भली तो है।

0: तुम माँ हो उसकी या?
1: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
0: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
1: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
0: वादा, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने माँ होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर बार उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है और सारे पल पल घुटती है।
1: अजी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो। अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे, पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
0: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
1: अरे जाने तो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
0: तुम माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
1: हाँ हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
0: मैं जा रहा हूँ, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहाँ रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
1: ठीक है, जाओ। बड़े आए प्यार जताने वाले। अरे जितना पैसा रसूल देता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए।

0: अब्बू।
1: कौन? सारे
0: हाँ,
1: आ गई बेटी? रख
0: खाना खा लो अब्बू।
1: दे बेटा।
0: अब्बू, एक बात पूछूं?
1: हाँ
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना आप पर बोझ बन गई थी। ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अब्बू, क्यों क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अब्बू, क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू

0: अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी।
1: आपने कुछ क्यों नहीं किया अबू?
0: मैं मजबूर हूँ बेटी। तू जा, घर जा बेटी।
1: अबू, अबू, आप रो रहे हैं। अबू।
0: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूँ। अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
1: अबू,
0: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया इस फूल सी बच्ची पर?

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन बट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाईजान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए, अंदर आइए।
3: क्या करीम भाईजान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। हाँ भाई। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है। कैसे हो सन बट? फाता कैसी है और सारे?
3: सब ठीक है।
1: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
3: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
1: ओ, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है। दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
3: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
1: हाँ, बस वो इंतजाम में लगा हूँ। कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
3: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
1: आप?
3: उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
3: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
1: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में है।
2: जी अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहो तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब,

0: फीस
1: आप फिक्र ना करें, असाइनमेंट ने फीस पहले ही दे दी है। आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
0: जी
2: अच्छा डॉक्टर,
0: जैसे आप बेहतर समझे।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
0: हसन भट्ट, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।

0: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
0: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई, अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: कौन?
3: मैं मुश्ताक।
2: मुश्ताक, मुश्ताक आप?
3: सारे तुम? अब्बू कहाँ हैं?
2: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आओ बैठो।
3: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
2: बेहतर है।
3: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
2: पूछो।
3: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
2: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
3: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
2: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक? अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
3: सारे, अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे, सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
2: पर ऐसा कौन हो सकता है?
3: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
2: क्या?
3: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
2: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक?
3: हाँ।
2: मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
3: सारे, मैं भी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है, तुम खुश रहो। अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
2: मुश्ताक, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
3: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
2: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार।
3: सारे,
2: नहीं देख सकते ना? ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।

आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। और मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन का एक बजा है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
1: सखियों, स्वागत है आपका महिला सभा कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए स्मृति तिवारी का नमस्कार। सखियों, हम सभी देख रहे हैं दुनिया भर में ईंधन का संकट बढ़ रहा है। इसके लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अपनी तरफ से प्रयास करें तो ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सखियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ईंधन की खपत कम करने के लिए कहा है। हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। आसपास के कार्यों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी दूर के लिए इसका उपयोग करने से हम ट्रैफिक जाम से आसानी से बच सकते हैं। सखियों, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे शरीर को चुस्त रखने के लिए और मसल्स को टोन करने के लिए भी चलाया जाता है। और अगर हम रोजाना 20-30 मिनट साइकिलिंग करें तो शरीर जो है हमारा शेप में रहता है। सखियों, हम कह सकते हैं साइकिल एक साधारण सवारी नहीं बल्कि सेहत और स्फूर्ति का खजाना है और इसके उपयोग से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। सेहत पर साइकिल चलाने के फायदों को ध्यान में रखकर ही हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए साइकिल के फायदे उजागर करना और सेहत के प्रति साइकिल चलाने के फायदों से लोगों को अवगत कराने जैसे कारणों को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाता है। सखियों, ये दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है और इसे चलाने के लिए पेट्रोल या CNG किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है। सखियों, साइकिलिंग हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। सखियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे रक्त संचार अच्छा व शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। साइकिलिंग करने से कैलोरी बर्न होती है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सखियों, पैडल चलाने से शरीर में एंड्रोफिन निकलता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही ये परिवहन का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन है। सखियों, आप भी साइकिलिंग करें लेकिन सुबह के समय। इस समय हीट वेव चल रही है इसलिए दोपहर और शाम के समय बिल्कुल भी साइकिल ना चलाएं।

सखियों, साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखाता है जीवन भर स्वस्थ रहना। जीवन के सफर में जब हम सफर साथ हो तो हर लम्हा खुशनुमा हो जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं और रास्ते यूं ही कट जाते हैं।

0: सखियों, कुछ समय पहले हम आपसे बात कर रहे थे सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तन के साथ मन भी खुश रहे। इसके लिए जरूरी होता है हम अच्छा साहित्य और किताबें पढ़ें। इससे हमारे अंदर नए विचार आते हैं। साथ ही अलग अलग परिस्थिति और घटनाओं को जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। इन भावों में शब्दों का संयोजन करके लय के साथ हम कविता और काव्य पाठ के रूप में व्यक्त करते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं ज्योति दोहरे।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। एक मुक्तक से सभी श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। चूंकि मैं कर्म को विशेष महत्व देती हूँ, मैं मानती हूँ कि कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सबसे विशेष होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा। नशा मेहनत का जो करते सबर से काम लेते हैं, नशा मेहनत का जो करते

हैं। मित्रों, हर किसी के आगे हमें झुकना भी नहीं चाहिए, हमें कैसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताती हूँ, सुनिएगा। कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटे इस धरा को और गगन की।

ताई को, और चार पंक्तियां और रखती हूं कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, और बनना हो जो सूत्रधार तो एक दो किताबें पढ़ने से क्या होगा, जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, कि जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। बेटियां चांद तक पहुंच गई फिर भी उन्हें आज कम आंका जाता है, और एक बेटी होने के नाते देश की सभी बेटियों को एक छंद अपना घनाक्षरी, मेरा सर्वप्रिय छंद, मैं उसको सभी को भेज रही हूं, सभी का आशीष मिले। सुनिएगा कि

को भेज रही हूँ, सप्रेम भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा। चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। के चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। दबे ना गरीबी यहाँ जीवन के बोझ तले,

चाहिए। हमारी कवियों की कलम बहुत कुछ लिखती है, लेकिन जब एक देश प्रेम की कवयित्री कुछ लिखने का प्रयास करती है तो सबसे पहले उसे सीमा पर जो सैनिक हैं उनकी माएँ याद आती हैं, क्योंकि उनकी अगर माँ ना हो तो वो सीमा पर सैनिक हमारे ना खड़े हों और हमारे देश की रखवाली ना कर रहे हों। तो सैनिकों की माओं के ऊपर समर्पित मेरा एक घनाक्षरी आप सभी को भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा।

और जाए हैं जिन माओ ने तमाम वीर कोख से, कि जाए हैं जिन माओ ने तमाम वीर कोख से, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी। और एक छंद में और आप सभी को भेज रही हूं, सुनिएगा। कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में, कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में, चीखती पुकार यहाँ सुन कौन पाएगा, कि बिन बाजे शंख यहाँ सभ्यता व एकता के, कि बिन बाजे शंख यहाँ सभ्यता व एकता के, अखंडता के स्वप्न यहाँ

राष्ट्रभक्ति भाव बिना देश का भविष्य यहाँ चुन कौन पाएगा, और कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, कि कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपका रस परिवर्तन करती हूँ और आपको एक गजल के एक मतले और एक शेर से जोड़ती हूँ कि गरीबों की बस्ती में, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, और मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, कि मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं। और एक शेर आप सभी के बीच पेश करती हूँ कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, कि सभी लोगों ने, कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, हमें मालूम है, कि हमें मालूम है बिकते यहाँ ईमान किसके हैं। और एक शेर देखिएगा कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, मेरे बारे में झूठे दे रखे बयान किसके हैं। और मक्ता पेश करती हूँ।

0: यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं।
1: सखियों, अभी आपने ज्योति दोहरे से काव्य पाठ सुना। सखियों, समर वेकेशंस चल रहे हैं और हम बच्चों को नई नई एक्टिविटी से जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। हम देखते हैं जब भी बच्चों को अपने मन के अनुसार कुछ करना होता है तो वे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो कभी टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को लंबे समय तक देखने में अपना समय बिताते हैं। लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने से वे ओवर एक्टिव होने लगते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है। सखियों, उनकी परिवर्तनशील भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें योग से जोड़ें। बच्चों में योग के प्रति रुचि जागृत करें, उन्हें योग करने के लिए प्रेरित करें। सखियों, बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, उनके साथ खुद भी योगा करें। एक शांत और सुरक्षित योगा स्पेस बनाएं, घर में एक आरामदायक जगह चुनें, गैजेट्स को वहाँ से दूर रखें और उनके साथ अभ्यास करें। सखियों, जब वे हमें करते देखेंगे तो वे स्वयं जुड़ना चाहेंगे। खेल खेल में 10-15 मिनट का अभ्यास कराते हुए योगासन को उनकी आदत में शामिल करें, साथ ही योग के प्रति उत्साहित करें। योग के आसनों को जानवरों या प्रकृति के नाम से जोड़कर मज़ेदार बनाएं। ताड़ासन, वृक्षासन, तितली आसन, भुजंगासन, सिंहासन कराएं। सखियों, इन योगासनों को करने से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम होता है और इससे उनका संतुलन और एरोबिक क्षमता भी बेहतर होती है। सखियों, जब बच्चे सही आसन में बैठना सीखते हैं ना, तो वे अपने शरीर के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, उनके जीवन में स्वस्थ शारीरिक आदतें शामिल होने लगती हैं। योग में गहरी सांस लेने की प्रक्रिया बच्चों को एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने और उनके मन को शांत करने में मदद करती है। सखियों, योग करते समय बच्चे शरीर पर संतुलन बनाना सीखते हैं, नए आसन सीखते हैं तो उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास आता है, अनुशासन में रहना सीखते हैं। उन्हें समझाएं कि योग दिनचर्या का सहज हिस्सा है, उसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और इससे याददाश्त यानी कि मेमोरी भी तेज होती है, पढ़ाई में मन अधिक लगता है और बच्चों की रचनात्मकता भी बढ़ती है। सखियों, हम बच्चों के सुबह के व्यायाम और सोने से पहले की दिनचर्या में सरल योगासन को शामिल कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से हमारी देखिए बॉन्डिंग है ना, वो और भी मजबूत होगी, वे अपनी बातों को आपसे और अधिक शेयर करेंगे और बच्चे आपके और भी करीब आ जाएंगे।

सखियों, हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। हीट वेव को हम सभी महसूस कर रहे हैं और इनसे बचने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक, शिकंजी, आम पना, मठा, छाछ, सत्तू का शरबत को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। ये पेट को ठंडा रखते हैं, साथ ही एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं। साथ ही ठंडी ठंडी लस्सी, मैंगो शेक का हम सब आनंद ले रहे हैं। सखियो, इस समय आम तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। आम से बने व्यंजन का स्वाद हमें अलग ही सुख देता है। सखियो, आम रस आम के गूदे से बना स्वादिष्ट और ताजा पेय है, जो अपनी प्राकृतिक मिठास और ठंडक के लिए जाना जाता है। सखियो, इस मौसम में इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। साथ ही ये पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सखियो, आम रस का प्रयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, साथ ही आइसक्रीम, केक में भी आम रस का उपयोग होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आम रस के बहुत लाभ होते हैं, जो गर्मियों में थकान को मिटाकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सखियो, आम रस विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आँखों की रोशनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आम रस पाचन में सहायक होता है और इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। सखियो, आम रस में कैलोरी और अधिक होती है। जिसका वजन बढ़ा हुआ है या मधुमेह रोगी है, डायबिटिक पेशेंट है, वो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। सखियो, आप भी घर में आम लाएं, आम रस बनाएं, पूरे परिवार के साथ इसका लुफ्त और आनंद उठाएं, लेकिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को कवर करके निकलें और साथ ही पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। और अब समय कह रहा है हमें चलने के लिए, तो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी सखी स्मृति तिवारी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं लोक भजन के साथ। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुति है आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: स्वाति पाराशर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की ये प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफ़ी का गाया, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया फिल्म मौसम का ये गीत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकास खंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे।

0: कि इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीटवेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों

0: एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्व

0: पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनना पसंद किया है। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदित्य शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने, गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि, रक्षित चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक, ऋचा स्वीटी, सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। मगरलोड धमतरी से पुनू राम साहू, राज तेजेश्वरी साहू, राजश्री राज साहू ने। इचलकरंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मितांशु हजारे और आदित्य हजारे ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, नुपुर, मोनिका, ऋषिका और रॉबिन ने। ये दिल आशिकाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने लिखा है गीत।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं स्टोर रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सुनना पसंद किया है, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये टाइटल, स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। निदा फाजले ने लिखा, उषा खन्ना की धुन।

कार्यक्रम में अगला गीत गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने सुनना पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने पसंद किया है। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की पसंद है शक्ति फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजाति विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजाति समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। CBSE ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान

0: जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांधिकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 नाटक सुनेगा अशोक वन का पेड़, लेखक जगदीश अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता भी जगदीश अधिकारी होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग बिहाग। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी आकाशवाणी के सांधिकालीन सभा के प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5:00 मीडियम वेव पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ भजन। लोक संगीत के कार्यक्रम में महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत, आरंभ में ये लोक भजन है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह भिदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल है डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। महावीर सिंह भदौरिया के गाए लोकगीत के बाद अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन।

स्वाति पाराशर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। प्रेम रोग फिल्म का यह गीत है, सुरेश वाडकर ने गाया है, संतोष आनंद ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

निकाह फिल्म का ये गीत था महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा आगा ने इसे गाया था। हसन कमाल ने गीत लिखा था, धुन बनाई थी रवि ने। सत्य पे सत्ता फिल्म का यह गीत है, आशा भोसले किशोर कुमार ने इसे गाए हैं। आर डी बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और बासु और साथियों की आवाज़ें हैं। गुलशन बावरा गीतकार हैं और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: दुखी बेदुखी।

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही छिटपुट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सीबीएसई ने बताया कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक सिस्किया का 8वां भाग।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे
1: कुछ बात करनी है तुझसे।
2: हाँ बोल।
1: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
2: क्या सुन रही है तू?
1: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
2: हाँ सच सुना है तूने।
1: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
2: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
1: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
2: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोल कर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहां मैं चाहूंगी।
1: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
2: तेरा निकाह रसूल से ही होगा, और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
1: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
2: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
1: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
2: क्यों, क्या कमी है उसमें?
1: तू खूब जानती है अम्मी उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
2: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है। और

0: उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है, तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
1: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
0: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
1: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
0: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
1: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
0: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
1: अम्मी,
0: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अरे अरे, क्या सोच रही है? खाना दे।
1: हाँ लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से। ऐसे क्या देख रही है मुझे? चल।

0: अब्बू अब्बू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा, बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि 1 महीने में आ जाएगा।
2: सारे सारे
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय साराय
0: आती हूँ।
2: साराय साराय
0: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
0: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
0: चाय लाऊं?

0: दे दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
1: रसोई में
0: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
1: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
0: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूं। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
1: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
0: अभी बताता हूं तुझे, हैं?
1: रसूल,

0: चाय।
1: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहा ना रहने दो।
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
1: मन नहीं है।
0: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
0: अरे तुम बेकार की बातें सोचकर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
1: अरे सारे को देखो।
0: क्या हुआ है सारे को, अच्छी भली तो है।
1: तुम माँ हो उसकी यहाँ?
0: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
1: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
0: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
1: फाता, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है, और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने माँ होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर बार उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है, और सारे पल पल घुटती है।
0: अजी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो? अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे, पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
1: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
0: अरे जाने दो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
1: तुम माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
0: हाँ हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
1: मैं जा रहा हूँ, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहाँ रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
0: ठीक है, जाओ। बड़े आए प्यार जताने वाले।

0: अब्बू।
1: कौन? सारे
0: हाँ,
1: आ गई बेटी, रख
0: खाना खा लो अब्बू।
1: दे बेटा।
0: अब्बू, एक बात पूछूं?
1: हाँ
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी,
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना आप पर बोझ बन गई थी। ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है, महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अब्बू, क्यों क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अब्बू, क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी,
0: आपने कुछ
1: शैतान।
0: क्यों नहीं किया अब्बू?
1: मैं मजबूर हूं बेटी, तू जा, घर जा बेटी।
0: अब्बू, अब्बू, आप रो रहे हैं।
1: नहीं
0: अब्बू,
1: बेटी, रो नहीं रहा हूं, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
0: अब्बू,
1: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया इस फूल सी बच्ची पर?

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन भट्ट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाई जान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए अंदर आइए।
3: क्या करीम भाई जान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। हाँ भाई। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है।

0: ماشي يا خسر بقى، فاتح कैसी है और सारे
1: सब ठीक है।
0: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
1: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
0: ओ, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है। दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
1: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
0: हाँ, बस वो इंतजाम में लगा हूं, कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
1: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
0: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
1: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
0: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में
2: जी। अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब आपकी फीस
0: आप फिक्र ना करें, हसन मंट ने फीस पहले ही दे दी है, आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर,
1: जैसे आप बेहतर समझे।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
2: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: कौन?
0: मैं मुश्ताक।
3: मुश्ताक मुश्ताक आप?
0: सारे तुम? अब्बू कहाँ है?
3: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आओ बैठो।
0: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
3: बेहतर है।
0: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
3: पूछो।
0: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
3: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
0: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
3: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक, अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मढ़ रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।

0: तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
1: पर ऐसा कौन हो सकता है?
0: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
1: क्या?
0: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।

0: पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
1: क्या?
0: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
1: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक। मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
0: लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है। तुम खुश रहो, अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
1: मुश्ताक, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
0: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
1: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार।
0: सारे
1: नहीं देख सकते ना, ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक, जो वक्त गुजरते मिट जाएंगे, पर मन पर जो जख्म लगे हैं वो तो मेरे तन के साथ ही मिटेंगे मुश्ताक।
0: नहीं सारे, अब ऐसा नहीं होगा।
1: मुश्ताक, तुम अब कुछ नहीं कर सकते।
0: नहीं सारे, अगर तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो और मेरा साथ दो तो हम आज भी एक हो सकते हैं।
1: क्या ये हो सकता है मुश्ताक? क्या हम फिर से एक हो सकते हैं?
0: हाँ सारे, तुम्हारे तन पर पड़ा हर जख्म मेरी रूह पर लगा है, और अब जब तक मैं तुम्हें रसूल से अलग न कर दूं तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा।
1: मुश्ताक,
2: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सिसकियां धारावाहिक का 8वां भाग सुना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 जून से सी फूड निर्यात पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। राज्यपाल आज हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव पुरखों को प्रणाम पोस्टर प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के आदिवासी नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और वंश देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान ग्वालियर केंद्र का है।

मीडियम वेव 102.3 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं मीडियम वेव पर। अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं साथियों कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कार्यक्रम युववाणी में साथियों एक बार फिर आपकी दोस्त उमा आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मई जून की इस भयंकर गर्मी में लोग अक्सर धूप और तेज़ गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। खासकर इस मौसम में जब लोग ठंडा पानी पीना बेहद पसंद करते हैं। चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने की आदत हम में से कई लोगों की होती है। इसे पीने से हमें तुरंत राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन ठंडे पानी पीने से मिलने वाली यह राहत कुछ पल की होती है। साथियों, आपको कुछ देर राहत देने वाला यह पानी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बहुत कम लोग यह ही जानते होंगे कि बर्फ़ वाला या चिल्ड वाटर पानी पीने से सेहत को कई गंभीर नुकसान पहुँच सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रिज में पानी आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा होता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर में अचानक बदलाव आता है। इससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ सकता है, बल्कि आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है। नियमित रूप से ठंडा पानी पीने से खाना पचाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही पेट दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं तो इससे ब्रेन फ्रिज की समस्या भी हो सकती है। दरअसल साथियों, ठंडा पानी रीढ़ की हड्डी की सेंसिटिव नसों को ठंडा करता है, जिससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसकी वजह से सिर दर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। साथ हमारे शरीर में वेगस नर्व होती हैं, जो गर्दन के जरिए हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी ये नसें तेज़ी से ठंडी होने लगती हैं और हार्ट रेट को और पल्स रेट को धीमा कर देती हैं, जिससे इमरजेंसी स्थिति पैदा हो सकती है। चिल्ड वाटर से गले में खराश और कंजेशन की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से खासकर खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा बलगम बनता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है और सूजन संबंधी संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए साथियों, चिल्ड पानी ना पिए। मिट्टी के बर्तन का पानी आयुर्वेद के अनुसार हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए फ्रिज के पानी की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों के पानी का उपयोग करें। इससे आप अपने

हेल्थ के साथ साथ बिजली की खपत को भी कम कर सकते हैं। साथियों, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो बिजली की खपत को बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे और जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इसके लिए आप नेचुरल लाइट का यूज़ करें, अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों के पर्दे खोलें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। जब भी हो सके आर्टिफिशियल लाइट पर निर्भर होने के बजाय यदि आप नेचुरल लाइट का उपयोग करेंगे तो आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। हल्के रंग के पर्दे खरीदें, उनसे कमरों में उजाला हो सकेगा और प्राइवेसी भी बनी रहेगी। साधारण बल्ब की जगह CFL और LED बल्ब का प्रयोग करने से काफ़ी ऊर्जा बचाई जा सकती है। साधारण बल्ब अपनी 98% कंज्यूम की गई ऊर्जा को गर्मी के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, जबकि CFL और LED बल्ब कई ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं और कई गुना ज़्यादा समय तक चलते हैं। ज़रूरत ना होने पर स्विच ऑफ कर दें और यह बिजली बचाने का सबसे आसान और सबसे आम तरीका है और यह वास्तव में काम करता है। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि एक निश्चित समय पर आपके घर में कितनी बत्तियां हैं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आपको एक समय पर कितनी बत्तियों की आवश्यकता है। जब आप एक कमरे से बाहर जाएं, तब हर बार बत्ती बुझाने की आदत बनाएं। किसी भी ऐसी डिवाइस को अनप्लग करें जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिन डिवाइस के प्लग सॉकेट में लगे होते हैं वे बंद होने के बावजूद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें। दरवाज़ा बार बार खोलने से फ्रिज के कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। AC के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत करें। इससे नीचे टेम्परेचर पर बिजली की खपत पर असर तेज़ी से पड़ता है। कूलर पंखे में इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करें और साथ ही ऑयलिंग, कंडेंसर, वायरिंग की सर्विसेज का ध्यान रखें। इस तरह साथियों, अपनी छोटी छोटी आदतों से आप बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे।

साथियों, नौ तपा में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। इसका असर हमारे साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ता है, वो भी ओवरहीट हो सकते हैं। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप

लैपटॉप ईयरबड्स या पावर बैंक जल्दी गर्म होते हैं। इससे बैटरी डैमेज, लो परफॉर्मेंस या अचानक डिवाइस बंद होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथियों, कभी आपने सोचा है कि आखिरकार फ़ोन में हीट बनती कैसे है? दरअसल साथियों, आपने एनर्जी का एक प्रिंसिपल पढ़ा या सुना होगा, E=mc². इसका मतलब होता है कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, सिर्फ बदलती रहती है। हमारा फ़ोन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब फ़ोन यूज़ होता है तो बैटरी में स्टोर एनर्जी हीट में बदलती रहती है और ये ज़्यादा से कम की ओर ट्रेवल करती है। नौतपा में साथियों, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में फ़ोन गर्म होने पर यह हीट वातावरण में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, इसलिए फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है। और ओवरहीटिंग से गैजेट्स को कई नुकसान होते हैं, जैसे बैटरी जल्दी ख़राब होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, प्रोसेसर या मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, फ़ोन या मोबाइल लैपटॉप बंद हो सकते हैं, बैटरी फूलने या और डिवाइस डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, अचानक शटडाउन से डेटा लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं साथियों, ओवरहीट से स्क्रीन पर भी असर पड़ता है, इसलिए साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं, जैसे फ़ोन को डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आने दें, बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज ना होने दें और फ़ोन ओवरनाइट चार्जिंग पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही यूज़ करें। फ़ोन हीट होने पर उसका कवर हटा दें, लैपटॉप को बेड तकिए पर रखकर तो बिल्कुल ना चलाएं, अनयूज्ड ऐप्स को बंद कर दें और साथियों सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाकर आप उनकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं।

आशा करती हूँ साथियों कि आपको हमारा आज का यह युववाणी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ। तब तक सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आप युववाणी कार्यक्रम साथियों मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथियों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अब अपनी दोस्त उमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
2: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गीत सुनते हैं। फिल्म है प्रेम रतन धन पायो।

तुमको मेरी कसम। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए नीति मोहन और पपून की आवाज़ों में। श्वेता बोथरा के लिखे गीत को संगीत दिया है प्रतीक वालिया ने।

श्रोताओं, अगला गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया, फिल्म है मिस्टर नटवरलाल।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए धूमधाम फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी ने किस गीत को गाया है। सिद्धांत कौशल के लिखे गीत को संगीत दिया है क्लिंटन सरेजो और बेंका गोम्स ने।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: कवि हेमंत देवलेकर

आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण से होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है। सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी,
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी,
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी,
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी,
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल
3: और धमधा ग्राम

0: हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी,
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ओ, ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे इस बार भी नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको, रुको। मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी

0: के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उससे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है।

0: मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है बहनों। चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार।
6: मिट्टी, पानी और बयान।
1: मिट्टी, पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
2: अरे क्या कर रहे हो?
8: भूखे ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
2: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर मर जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
2: अरे कहां से?
8: दो मिनट की बात तो मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
2: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
0: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
7: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल

0: हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आपने NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पद्मावत फिल्म का गीत सुनते हैं श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज़ों में। एएम तुर्ज के लिखे गीत को संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

अब सुनिए नादानियाँ फिल्म का गीत सचिन टंडन, आशीष कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

अगला गीत विवाह फिल्म से है, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

सूरज जगन की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिसेस फिल्म का गीत। नीरज पांडे ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सागर देसाई।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए पराया धन फिल्म का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम विवरण का समय है, तो आइए पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रम।

0: आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक

आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक अशोक वन का पेड़। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी। राग रजनी कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिए रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन। राग होगा बिहाग।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रम

के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनेंगे राजीव शर्मा के गाए कुछ गीत और भजन। रणधीर पहलवान, सादत हसन मंटो का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता होंगे राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनेंगे सिसकियां धारावाहिक की 9वीं कड़ी। जबलपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां जबलपुर केंद्र की होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10:00 दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल शाम 7:21 पर भोपाल से आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और राज्यपाल वंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थीं। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा

0: कहा कि यह काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
1: हमारे गाँव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह है 11 समूह है, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक कीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संजय सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलना।
0: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने GEE एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए ST PWD श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरानाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहें ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सबई कक्का जिजी बिन्ना जनों को आरती जिजी की राम राम पहुँचे। भैया जिजी जनों, देखो आज है 3 जून और आज पूरा विश्व जो है विश्व साइकिल दिवस के रूप में बना रहा है। बचपन में अपन सभी खेल के रूप में अपनी साइकिलें चलाते हैं या इतने से उतने जावे के लाने, लेकिन अगर अपन यही दिवस के मनावे के उद्देश्य की बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सब जने साइकिल को उपयोग करत भाई अपने आप को ना केवल स्वस्थ रख दें बल्कि अपने आप को इतना तंदुरुस्त बना लें कि अपनी दैनिक

जी जो यात्राएं हैं उनको प्रदूषण मुक्त करके रखें। कहे कि जब अपन साइकिल को उपयोग करते हैं तो ना केवल अपना वातावरण शुद्ध रहते हैं, कहे से अपन कोनो प्रकार के ईंधन को उपयोग नहीं करत, और संगे संगे अपन आर्थिक मजबूती की तरफ भी बढ़ते हैं। कहे कि ईंधन खरीद के लाने अपन को पैसा लगाउन पड़ते हैं। तो जा दिवस के माध्यम से जन जन लो अपन को जय जागरूकता फैलानी है कि अपने जीवन में हमें साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने हैं, और हर बरस ई जो दिवस को हैं कोना को विषय के रूप में मनाओ जात है। तो ई वर्ष को जो विषय रखोगा वो है हरियाली भरे भविष्य की लाने साइकिल चलाना। तो अगर हमें अपनो हरो भरो अपने आसपास को वातावरण रखने हैं तो हमें अपने साधन के रूप में साइकिल को अपनाने हैं, अपने स्वास्थ्य के लाने साइकिल को अपनाने हैं, और सबको ईखो चलावे के लाने प्रेरित सही करने हैं। और अब सुन लेते हैं अनीता यादव के स्वर में जो देवी गीत।

0: मैयारो, अब समय हो रहा है बुंदेली समाचारों को, सो सुनत हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारन के संगे मैं आरती शर्मा। पीएम मोदी नेपाल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात करी। श्री मोदी ने कहा है कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उनने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जावे के लाने नेपाल की नई सरकार के संगे मिलकर काम करवे के लाने तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़त भई कीमतों से राहत दिलावे के लाने तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी।

0: यह पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपये से बढ़कर मई में 142 रुपये प्रति लीटर हो गई थीं। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी और इसे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BAS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलवे की योजना को भी हरी झंडी दी है। PM मोदी MP राष्ट्रीय राजमार्ग उतई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे रही है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी ई परियोजना पे 4,415 करोड़ रुपए खर्च हुई हैं। इसे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले में सड़क की स्थिति सुधर है और यातायात की जाम की समस्या से राहत मिल है। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के संगे संगे कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क हुई है। राष्ट्रपति जनजातीय विकास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करवे के लाने राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन करो। ई मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहत है। मुख्य सचिव समीक्षा प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाओ जे है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारी की समीक्षा करी। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बृहद पौधारोपण से हुई है। ई के बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पे कार्यशालाएं आयोजित करी जे हैं। जो पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न हुई है। राज्यपाल हिंदी पत्रकारिता राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता 2वीं शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी को उद्घाटन करो। ई अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगावे और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करवे में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ने की जरूरत है। मतदाता सूची पुनरीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करी है। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करवे के भी निर्देश दिए हैं। श्रमिकों के बच्चों के लाने निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लाने भोपाल के समुदाय आदर्श ITI में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के लाने प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थी 30 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, IoT, फैशन डिजाइन सहित 8 ट्रेंडों पर प्रवेश मिल है और चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क हॉस्टल और भोजन की सुविधा सोई तय जय है। पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जन कल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में बृहद पौधारोपण के निर्देश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम भी हुई है। अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखो है। बारिश, तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। कहीं भी हीट वेव नहीं बनी है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश को अलर्ट जारी करो है। बुंदेली समाचार इतनी संपन्न होते हैं।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया हरो रेडियो से चाहे मनोरंजन की बात हो या फिर देश विदेश की जानकारी या अपने ग्रामीण भाइयों के लिए समसामयिक जानकारी और बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसे वे अपने खेती किसानी को और अधिक उन्नत और अधिक पैदावार युक्त बना सकते हैं। तो जय विषय पे कुछ ऐसी वार्ता है आज लेके हम हाजिर भए हैं। ग्रामीण विकास में रेडियो को समयिक योगदान और ई विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे और उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने। तो सुन लेते हैं जब भेंट वार्ता ग्रामीण विकास में रेडियो का समय योगदान।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, रेडियो आकाशवाणी को आप सभी लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी उम्र को देखें और सोचें कि आप इसको कब से सुन रहे हैं, रेडियो को कितने वर्षों से सुन रहे हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे, बचपन से पूरा जीवन हो गया रेडियो सुनते हुए। जी हाँ, क्योंकि रेडियो के प्रसारण को, आकाशवाणी के प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। यह गरिमा में जो सफर रहा है उसी पर हम बात करना चाहते हैं और आज का हमारा विषय है कृषि एवं ग्रामीण विकास में रेडियो का सम्यक योगदान। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रेडियो के एक अच्छे ब्रॉडकास्टर कह सकते हैं, प्रसारणकर्ता भी कह सकते हैं, एक अच्छे सुधी श्रोता भी कहे जा सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप खरे, जो कि व्याख्याता हैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय नूतन कॉलेज भोपाल में। आप हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात हो रही है रेडियो के सफर की और रेडियो के 90 वर्षों का जो ये सफर है, इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष जो पूर्ण होने वाले हैं
0: जी,
1: उसमें आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं को नमस्कार कर रहा हूं और सभी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहा हूं
0: जी।
1: मैं इस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को आकाशवाणी के साथ जुड़ करके और इस पर बात करने के लिए
0: जी।
1: उसकी खास बात ये है कि लगभग 55 साल से नियमित रूप से
0: जी
1: मैं रेडियो को सुन रहा हूँ।
0: क्या बात,
1: रेडियो ने जो ये यात्रा पूरी की है
0: जी,
1: आवाज के इस साल में शायद 8 जून 2026 को जो ये पूरे होने वाले हैं 90 वर्ष, मुझे लगता है कितनी बड़ी यात्रा होगी ये जो आज तक चल रही है, जिसके साथ हम लोगों ने अपना जीवन जिया है
0: जी,
1: जिसके साथ हम लोगों ने अपनी संस्कृति को देखा है,
0: क्या बात,
1: जिसके साथ हमने अपने गांवों को देखा है
0: जी,
1: और गांव की कितनी अच्छी संस्कृति होती है
0: जी,
1: चाहे वो कृषि विकास को ले लें, चाहे ग्रामीण जीवन को ले लें, चाहे ग्रामीण संस्कृति को ले लें, एक अद्भुत आनंद पैदा करता है
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर हमको रेडियो के सुनने की जो हमारी क्षमता और क्षमता के साथ में उसकी जो चीजें कंटेंट हमको मिलती हैं, उसकी विषय वस्तु, वो हमको बिल्कुल गौरवान्वित कर देती है और हम गर्व से प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने रेडियो और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे करने वाले हैं। मैं बहुत ही निश्चित रूप से आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आपके साथ इस बातचीत में शामिल होकर के।
0: वाकई 8 जून 1936 से शुरू हुआ यह सफर अब 90 वर्ष पूर्ण करने वाला है। मैं खरे साहब आपसे थोड़ा सा आपको बचपन में ले जाना चाहता हूं। जब आप छोटे रहे होंगे, क्या आपके कुछ संस्मरण हैं अभी जो रेडियो से जुड़े रहे हों बचपन में?
1: देखिए, बचपन की अगर आप बात करेंगे तो मेरा जीवन रेडियो को सुनने से ही शुरू हुआ है, आज से 55 वर्ष पहले, क्योंकि हमारे घर और परिवार में एक किसान परिवार का बेटा होने के कारण
0: जी,
1: खेती से जुड़े होने के कारण
0: जी,
1: गांव में रहने के कारण
0: जी,
1: हमको यही संस्कार मिला है कि हम केवल रेडियो को सुन सकते थे और रेडियो को हम एक मार्गदर्शक मानते थे, एक ऐसा बिंदु मानते थे कि जैसे ये हमारा मित्र है। हम बाहर तो खेलने बचपन में बच्चों के साथ जाते थे, लेकिन घर में आने के बाद रात तक रेडियो का ही श्रवण करते रहते थे
0: जी जी।
1: तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि हम अपनी घड़ी का जो मिलान करते थे वो रेडियो से करते थे, किसी से पूछ करके नहीं करते थे। अगर किसी ने कोई दूसरा टाइम बता दिया हमको तो उस पर भरोसा जल्दी नहीं होता था और हम उसको ये बोलते थे कि मेरी घड़ी भैया रेडियो से मिली हुई है तो वो व्यक्ति भी रेडियो से अपनी घड़ी को मिलाता था, यानी कि इतना बड़ा मित्र, इतना बड़ा मार्गदर्शक जो हमको जीना सिखाता है
0: जी,
1: जो हमारे समय को पाबंद करता है, जो हमें अपनी सुइयों में बांध के रखता है, उसको हम जैसे ही डायल करते थे तो बहुत सारे आकाशवाणी के चैनल हमको ये बताते थे कि आज ये कार्यक्रम आने वाला है, ये कार्यक्रम आने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक कागज और पेन लेकर के उस कार्यक्रमों को नोट कर लेता था। इसलिए नोट करता था कि इतने बजे आकाशवाणी से ये कार्यक्रम आएगा और इस कार्यक्रम को सुनना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि गांव से जुड़े होने के कारण कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बड़ी धैर्य और बड़े प्रेम से सुनते थे।

0: देते थे आप?
1: क्योंकि हमें मालूम तो हो कि आखिर कृषि की उन्नति किस तरह से हो रही है। क्योंकि सच में अगर आप देखें तो हमारा देश गांव में बसता है, हमारी संस्कृति गांवों की है। जितने शहर ये बने हुए हैं ये गांव के टुकड़े होकर के, टुकड़े ना कहें तो गांव की संस्कृति ही शहरों में पहुंची है और फिर कहीं ना कहीं वो प्रदूषित होकर के महानगरों का रूप ले लिया है।
0: रेडियो ने जो ये पूरे सफर तय किया है इतना लंबा, इसमें ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें, कृषि के विकास की अगर हम बात करें, तो आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से रेडियो का योगदान रहा होगा कृषि विकास में और गांव के विकास में?
1: वाह, कितना बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और ग्रामीण भारत तक जानकारी पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कुछ रहा है तो वो रेडियो ही रहा है। रेडियो ने आखिर क्या किया ये देखने की जरूरत है। खेती की नई तकनीक अगर कहीं हमें प्राप्त हुई है तो रेडियो और आकाशवाणी के माध्यम से और उसके प्रसारण के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। मौसम की जानकारी, कब बारिश होने वाली है, कब ओलावृष्टि होने वाली है, अगर इस जानकारी की अगर आप बात करेंगे तो इतना सशक्त माध्यम है ये रेडियो आकाशवाणी के प्रसारण कि कल बारिश होने वाली है, खेत में किसान को जाना है या नहीं, उसको कौन से बीज को बोना है और कौन कौन से काम उस समयबद्ध तरीके से करना है, उस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें रेडियो का ही सहारा लेना होता था। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो डिजिटल युग आ गया है
0: जी।
1: लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जैसे श्रोता हैं जो रेडियो को आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं
0: जी।
1: अपनी घड़ी के मिलान से लेके उन्नत कृषि के तरीकों को लेकर के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी, इतना ही नहीं कौन से बीज, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की जानकारी वो रेडियो के माध्यम से ही मिल रही है हमको
0: जी।
1: तो ये जो सारी जानकारी है ये किसानों तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंची है और आज भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि पहुंच रही है। इससे हुआ क्या, ये जानकारी तो पहुंच गई
0: जी,
1: लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और कृषि के प्रति, ग्रामीण विकास के प्रति जनमानस में एक जागरूकता भी पैदा हुई।
0: बिल्कुल सच बात है। और मुझे याद आ रहा है सर कि मैं जब बचपन से रेडियो में भी सुनता आया हूँ और मैं अपना खुद का अनुभव बीच में साझा करना चाहूंगा
1: जी,
0: कि मैं बहुत छोटा था जब रेडियो चलता था तो मुझे लगता था इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं और ऐसा लगता था कि हमारे ही परिवेश के लोग वहां बैठ करके बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और वो जब जिज्ञासा मन में होती थी तो लगता है कि रेडियो वाकई अंतस में जाकर के बस जाता है और फिर रेडियो जब चलता है जीवन में तो आगे बढ़ाता ले जाता है। पहले रोजगार समाचार, रेल सूचनाएं भी पहले रेडियो से जाया करती थी, जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो जरिया होता था सूचना प्राप्त करने का, समाचार प्राप्त करने का। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। आपकी मन में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आज भी आपके मन में छाप है, जिनकी लगता है कि वो कार्यक्रम आज भी हमारे लिए यादगार हैं?
1: देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न मुझे पूछा है और इससे मुझे, आपके पूछने से मुझे याद आ रहा है कि लगभग मैं शायद 5 या 6 वर्ष का रहा हूँगा
0: जी,
1: तब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ
0: जी जी।
1: इतना प्रभावी माध्यम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है और मुझे लगता है आज के डिजिटल युग में जो हम पहुंचे हैं ना वो रेडियो के माध्यम से ही पहुंचे हैं। अगर शायद रेडियो नहीं होता तो हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों में इतनी बड़ी खोज आज तक नहीं पहुंच पाती। खैर, दूसरा प्रश्न आपका इसी के साथ में, और कुछ भी पूछा आपने शायद,
0: कौन कौन से कार्यक्रम है रेडियो?
1: हाँ देखिए, मैं तो बढ़िया बात है, मुझे अवसर मिला कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ और मैं रोमांचित भी हो रहा हूँ
0: जी जी
1: रेडियो और आकाशवाणी की बात से, क्योंकि इसको मैं 55 साल से आपको पहले ही बताया सुन रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, खास तौर से कृषि दर्शन का कार्यक्रम आता था
0: जी,
1: चौपाल का कार्यक्रम आता था हमारे घर के बाहर, चौपाल में बैठ करके बहुत सारे गांव के लोग बैठते थे और रेडियो बीच में उनके बैठा रहता था। तो हम ऐसी कल्पना में हम लोग करते थे और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त के, ऐसी कल्पना करते थे कि जैसे रेडियो एक व्यक्ति के रूप में वहाँ उपस्थित है और वो जो बोल रहा है उसको हम लोग सुन रहे हैं, और उस वो एक आदर्श के रूप में रहता था और उसकी बात को हम मान भी रहे हैं। तो कृषि दर्शन का कार्यक्रम, चौपाल का कार्यक्रम, और मुझे याद आ रहा है कि किसानवाड़ी का कार्यक्रम, मौसम बुलेटिन, सरकारी योजनाओं से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि उस समय तो हम छोटे बच्चे थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो भी हमारा सुनना बंद नहीं हुआ, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर आते थे तो उसी के माध्यम से मालूम होते थे। और जब रेडियो से ये मालूम हो जाता था कि रोजगार की ये जगह आई हुई है, तब उससे संबंधित हम रोजगार समाचार या उस समय जो भी इस तरह के बुलेटिन उपलब्ध हुआ

0: प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको खरीद करके हम लोग आवेदन किया करते थे। तो रेडियो की बड़ी सशक्त और इस तरह की ये भूमिका रही है प्रारंभ से ही।
1: वाकई खरे साहब, जैसा आपने कहा ना कि रेडियो बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, और लक्ष्य रेडियो का यही है कि महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, इवन किसान हो, सभी के लिए इसमें बहुरंगी कार्यक्रम होते हैं और सबको ज्ञान देना, सबके लिए रास्ता देना, सबके लिए एक सलाह देना, एक अच्छी अच्छी जानकारियां उन तक पहुंचाना रेडियो का काम है। अब डिजिटल युग आ चुका है, आज बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन आज की इस परिस्थिति में रेडियो की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, आज का युग डिजिटल युग है
1: जी।
0: हमारे नौजवान, हमारे बच्चे सारे अब डिजिटल युग के साथ में समाविष्ट हो गए हैं
1: जी।
0: लेकिन इससे आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि रेडियो की महत्ता कम हुई है। रेडियो की स्थिति आज भी वही है, आज भी वही श्रोता हैं। 55, 60, 70 साल पुराने श्रोता आज भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं। डिजिटल युग में वो नहीं जी रहे हैं, उनके बच्चों के माध्यम से वो डिजिटल युग को जानते जरूर हैं
1: जी। जी,
0: मोबाइल फोन, FM रेडियो के माध्यम से किसान तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसका लाभ हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास में कमी कहीं नहीं आई है, उनकी सूचनाओं में कहीं कमी नहीं आई है, क्योंकि FM रेडियो भी और मोबाइल फोन भी
1: जी
0: वो जानकारी प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी खास बात और देखिए, आपकी आपदा या खराब नेटवर्क की वजह से रेडियो एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है आज के समय में।
1: सच बात। और सर, एक बात और भी मैं आपको बीच में कहना चाहूंगा कि आज का डिजिटल युग आया है तो रेडियो भी अब डिजिटल युग में जा चुका है। हमारा न्यूज ऑन AIR एक ऐप है जिसके माध्यम से आप मोबाइल में उसको ऐप को डाउनलोड करके
0: जी, जी।
1: पूरे देश के कार्यक्रमों को आप एक ही मोबाइल में एक साथ ट्यून करके सुन सकते हैं। हमारे युवा साथी, हमारे जितने भी रेडियो के श्रोता हैं, वे इस नए युग में नए तरीके से नए परिवेश में रेडियो को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं सर आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप तो रेडियो में कंपेयर रहे हैं, सूत्रधार की भूमिका आपने निभाई है और आपके परिवार से भी रेडियो से जुड़े हुए लोग रहे हैं, क्योंकि आप श्रोता के लिए नहीं हैं, आप वक्ता भी हैं रेडियो पर, क्या कहना चाहेंगे?
0: जी जी जी, आपने फिर मुझे वही पुरानी बातें याद दिला दी। बहुत मैं छात्र जीवन में था जब रेडियो से मुझे प्रेम हुआ था।
1: पहला प्रेम आपका रेडियो है?
0: निश्चित रूप से रेडियो ही है, बिल्कुल। रेडियो से प्रेम होने के कारण ही मेरी बड़ी आकांक्षा होती थी कि मैं रेडियो में बोलूं, आकाशवाणी के माध्यम से मेरी आवाज दूसरे तक पहुंचे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जबलपुर आकाशवाणी से युवाणी कार्यक्रम में, कृषि दर्शन कार्यक्रम में और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने कंपेयरिंग का काम किया। तो ये मान के चलिए कि रेडियो की जो भूमिका है युवाओं के लिए तो है ही, युवाओं की आपने बात की, महिलाओं के विकास के लिए भी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है
1: जी। जी,
0: रेडियो ने महिलाओं को क्या दिया? स्वास्थ्य की जानकारी दी, पोषण की जानकारी दी, खान पान की जानकारी दी, स्वरोजगार और शिक्षा संबंधी जानकारी प्रारंभिक रूप से रेडियो से ही प्राप्त हुई। तो युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, जो आजकल पूरे देश में कौशल विकास की बात चल रही है, ये काम रेडियो में शुरू हो चुका था। आकाशवाणी के माध्यम से कौशल का कैसे विकास किया जाए, इस तरह के कार्यक्रम आया करते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कौशल विकास के कार्यक्रम, आधुनिक कृषि तकनीकों के कार्यक्रम, ये सब इनका जो सूत्रपात है वो रेडियो के माध्यम से ही जनमानस तक संस्कारित होकर के पहुंचा है।
1: बिल्कुल, अब बात कहीं अधूरी रह गई बीच में। मैंने शायद सुना था कि आपके परिवार में कुछ और लोग भी हैं जो रेडियो से जुड़े रहे हैं, आप शायद किनारा कर लिए उस बात को, मैं चाहता हूं वो भी हमारे श्रोता सुने।
0: जी जी जी जी जी, शायद मुझे उल्लेख करना ही पड़ेगा, आपने बताया तो। बहुत सालों तक आकाशवाणी भोपाल
1: जी,
0: आकाशवाणी सागर
1: जी,
0: मेरी पत्नी ग्राम सभा में बहुत वर्षों तक कंपेयर रही
1: जी,
0: ग्राम सभा के अनेक कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किए।
1: मैं आपको बता दूं, हमारे श्रोताओं को भी बता दूं कि 98 में उनका यहाँ उस समय ग्राम सभा में ऐसे कंपेयर के रूप में वे रही हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम उनके साथ ग्राम सभा में दिए हैं, और बहुत वाकई बहुत अच्छा उनके साथ का वो रहा है काम करने का अनुभव मेरा। जिस तरीके से रेडियो आगे बढ़ रहा है और इतना लंबा सफर रेडियो ने सफलतापूर्वक तय किया है, हमारे

0: श्रोताओं के लिए आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता कि जहां आज भी विकास के मार्ग नहीं खुल पाए हैं, रेडियो ने उनको संस्कारित और विकसित किया है। वो रेडियो की आवाज ही उनको संस्कार भी दे रही है और उनका मनोरंजन भी कर रही है। जो लोग संस्कारित हो चुके हैं, जो शिक्षित हो चुके हैं, जो महानगरों में हैं और गांव में हैं, वो तो अब रेडियो के ऊपर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि अब डिजिटल युग आ गया है।
0: सच बात।
1: लेकिन रेडियो की अस्मिता, रेडियो के अस्तित्व को वो लोग नकार नहीं सकते हैं। और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है, या शायद अभी भी हो, क्योंकि मैं तकनीक से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ गाँव में रहने के कारण, और वहाँ पर ग्राम में जीवन में संस्कारित होने के कारण, कि शायद भविष्य में या आज भी रेडियो डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और इंटरनेट रेडियो के साथ और अधिक प्रभावी रेडियो बनता चला जा रहा है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि बन गया है। अब आप देखिए कि स्थानीय भाषाओं में, जिस प्रदेश में जाएं वहाँ की अपनी एक स्थानीय भाषा है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो स्थानीय भाषाओं में भी कृषि आधारित कार्यक्रम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने सुधी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि रेडियो में जो जानकारी मिल रही है वो सच्ची जानकारी है, सही जानकारी है, बहुत शोध परक जानकारी है, उसको आप प्रामाणिक तौर पर स्वीकार कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे जी, आपने हमसे बहुत अच्छी और लंबी बातचीत की है, बहुत सारगर्भित बातचीत की है, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी हमारे श्रोता भैया बहन सुन रहे थे ग्रामीण विकास में रेडियो की सामयिक योगदान। ये वार्ता सुन के जरूर वे लाभान्वित हुई हुई हैं और उन्हें भी अपने दिन याद आ गए हुई हैं कि कैसे उनने अपने बचपन की शुरुआत रेडियो के माध्यम से करी थी और आज 90 वर्ष होवे पे भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ बदलावों के साथ हमारे रेडियो में वही एक चमक बनी हुई है। और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे और उनसे बातचीत करी थी मनोज सक्सेना भैया ने। और अब सुन लेते हैं गिरजा भाई को गाओ भाओ एक कृष्ण भजन।

भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखवे के लाने हमें जरूरी होते है कि हम सतत फसल उत्पादन लेते रहे। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनने प्रकृति से जो जीवाणु अपन को मिल रहे हैं उनको पहचान के उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के लाने जो उपयोगी उर्वरक हैं उनको तैयार करके रखो है, जिन्हें हम जैव उर्वरक या जीवाणु खाद कहते हैं। जैव उर्वरक के इस्तेमाल करवे से वायुमंडल में जितने भी उपस्थित नाइट्रोजन हैं पौधों को सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। भूमि में उपलब्ध फॉस्फोरस घुलनशील रूप में भी उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे माटी और उपजाऊ बन जाते हैं। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में हैं, विकल्प के रूप में इनको हम नहीं मान सकते हैं। जैव उर्वरकों में जीवित सूक्ष्म जीव जीवाणु कहलेवे कवक और शैवाल के रूप में पाए जाते हैं, जे पौधों की जड़ों या मिट्टी में पहुँच के प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व की संख्या को बढ़ाऊ थे और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है ऊखो स्थिर भी रखते हैं। फास्फोरस को घुलनशील बनाऊ थे और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। जई काजे ये हमारे सबके लाने बहुत उपयोगी माने जाते हैं। और इनके उपयोग में सबसे बड़ी बात करें कि जैव उर्वरक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे राइजोबियम होते हैं जो दलहनी फसलों में गांठें बनाऊते हैं, एजोटो बैटर होते हैं जो गेहूँ मक्का कपास के लाजे नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। फास्फोरस घुलनशील जीवाणु के रूप में होते हैं, ये मिट्टी में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील के रूप में पौधों लोग उपलब्ध कराते हैं। नील हरित शैवाल के रूप में होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो बात है वो इनमें बहुत सारे लाभ छुपे भए हैं। सबसे बड़ी बात है ये लागत में कम होते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, कैसे ये प्राकृतिक जीवाणुओं से बनाते हैं, इनमें जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो पर्यावरण संरक्षण के करीब हैं। रासायनिक उर्वरकों की तरह इनमें पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने की क्षमता नहीं होते बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वह उत्पादन में जे वृद्धि कराते हैं। जब इतनी अच्छी इनमें बात है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरकों को प्रयोग करें और अपनी जो है फसल को और उपजाऊ बना के रख लें। और अब सुन लेते हैं गणपत सिंह यादव और साथियों के स्वर में जो लोकगीत।

भैया हरो चलवे से पहले आप और खो कल की कार्यक्रम सोई बताओ चलवे कल भुंसरा सुनवे कृषि चर्चा 6:45 पे मृदा सौरीकरण को महत्व और वाचक से रही है आराधना कुमारी को और संजय चुने भेंट वार्ता गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य रहवे के लाने आयुर्वेद की सलाह वाचक से रही है ऋतु पांडे से पूनम सरावगी की बातचीत और आरती बहन को देव आज्ञा राम राम।

0: size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
2: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
1: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
0: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पावर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पावर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ आपके पास घर नहीं है टुमारो यू गेट अ हाउस यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच हैज बीन यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी बिकॉज दोज पीपल financially fine they may be earning whatever they earn but today they have facilities which are probably been enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life
1: the facilities that are very basic facilities Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get
0: no but the thing is that you we me and you can call them basic but for them it was a luxury at one point of time and today they feel that these were basic amenities which I was lacking and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं इससे लोगों की इनकम और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि

0: अब मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या, जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की। वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें, उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभा। देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा, वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू, बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड, a lot of youngsters, and today just on startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed, and government has created a startup fund where you know, because these startup look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so here government became an angel, right. And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers to being job creators, when I talk to a cross-section of youth

0: made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example.
1: Absolutely.
0: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kehna chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको ख़त्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को ख़त्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज़्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत ज़रूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: थी, डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो काम किया उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव, हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया सुशासन और भारत के जो प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत

0: पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours an Uber for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाएं, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे हैं, which is of international level. The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
1: And you know, that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, जो expansion हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं, उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047। और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी, तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोच

0: ना पड़ता था, क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेनस्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेनस्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इस

0: से आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
5: आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत गुड्डी फिल्म के गीत से, आवाज़ वाणी जयराम की, शब्द रचना गुलजार की और संगीतकार वसंत देसाई।

बैजू बावरा का फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार नौशाद।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का। श्रोताओ, एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में ये सूचना है।

प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित किया जाता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड और निशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और दूसरी ईमेल है hopeairbhopal@gmail.com। इन दोनों ईमेल पर से किसी पर भी आप अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव

0: ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में

0: कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी

0: सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44

0: प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees,

0: its air defences and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Keralam and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Gadde defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal and West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Sivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मंसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली ऋतुव्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: एटीएफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ

0: होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रीता ब्रता जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए रीता ब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीता ब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाकये को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिवकुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर जिन्होंने सिद्धरमैया काबीना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालविया नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जुनूबी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधु ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका क्यादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स गेस्ट हाउसों नर्सिंग होम्स कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर CP राधा कृष्णन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल

0: होगी। तीन महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और तीन महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी असलाहत के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निज़ाम को सहल बनाया, बैंककारी को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निज़ाम ने इस तबके के माली तहफ़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में असलाहत के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज़ फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
3: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकतदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संगे मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर

2026 27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Sandra Chakar Şehri. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के, वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो

0: का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको है फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है, यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि तो फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी पे उन कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे बहुत फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, इसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो

0: हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें यह है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके बाद कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हमको बात करते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है

0: जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात या मध्य भाग की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और
1: जी
0: कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: रवाज जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और
1: जी
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पर और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर सौ बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट हो रहे होते हैं उसे प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें इनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत की में जो मानसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब अल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशन है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एल नीनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन

0: कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा, जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यही कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मवर्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद

0: में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये घटता इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी, डॉक्टर डबास आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप काफी आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है, ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है, तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले, और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी।
0: इसके साथ साथ में AI का भी काफी

0: भी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे

0: पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: प्रस्तुत है नाटक अशोक वन का पेड़। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी।

0: बाबा,
1: हाँ
0: अरे ओ बाबा,
1: हाँ
0: ये पहाड़ी गांव क्या नाम, सिंगारपुर, वो किधर है?
1: सीधे सीधे भैया, बिल्कुल सीधे चले जाओ। वो जो अगली पहाड़ी पर सुंदर सी बस्ती है ना, वही है सिंगारपुर।
0: अच्छा, जो बिल्कुल सीधे।
1: हाँ
0: अब वो क्या है बाबा, शहर से नया आया हूं ना, इसलिए आपको तकलीफ दी।
1: सुनो बेटा, मेरी कुछ सहायता कर सकते हो?
0: सहायता? बाबा कैसी सहायता?
1: अरे वो वहां से थोड़ा सा पानी ले आना बेटा।
0: अच्छा, पीने के लिए पानी चाहिए आपको? अब मेरे पास है, आपको दे देता
1: अरे
0: हूं।
1: नहीं नहीं बेटा, इस पौधे में डालने के लिए चाहिए।
0: अब बाबा, ये आप ये जमीन क्यों खोद रहे हैं?
1: भाई इस पौधे को इस जमीन में उगाने के लिए।
0: ये लीजिए पानी।
1: गांव तो सीधा है बेटा, धीरे धीरे निकल जाओ। सिर पर धूप चढ़ने से पहले शायद गांव पहुंच जाओगे।
0: धन्यवाद बाबा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी?
1: उम्र? उम्र तो कोई यही 70 साल होगी बेटा।
0: बाबा पर लगती तो कुछ ज्यादा है।
1: हाँ, सिर्फ कुछ साल और बाकी होंगे, जीना तो पड़ेगा ही बेटा।
0: हाँ बाबा, कुछ साल या कुछ महीने भी तो हो सकते हैं ना बाबा। और फिर भी आप इस पौधे को उगाने के लिए बैठे हैं, भला क्यों?
1: अरे हाँ भाई, तभी तो ये पौधा मेरे सपनों का पेड़ बनेगा।
0: अब एक बात कहूँ बाबा?
1: हाँ,
0: अब देखो बाबा, अब मैं आपका कोई करीबी रिश्तेदार तो हूँ नहीं जो आप पर हक जता सकूँ, पर हाँ आपका हितैषी जरूर हूँ। बस इसी नाते आपको एक राय देना चाहता
1: बोलो
0: हूँ।
1: बोलो।
0: अब बाबा छोड़ दीजिए ये पागलपन, अब इस उम्र में इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
1: पागलपन?
0: हाँ बाबा, और वो भी इस उम्र में।
1: अरे पेड़ उगाना क्या पागलपन है बेटा, है?
0: तो बाबा और क्या कहा जा सकता है?
1: अरे ये भी तो सोचो भाई, आज अगर पेड़ लगाऊंगा तो कुछ 1 सालों के बाद ये बड़ा होगा, अपने गोल गोल तनों और असंख्य शाखाओं के साथ, और फिर इसकी सुंदर सी नाजुक पत्तियां जाने कितनों को छाया देंगी। उसके कुछ एक दिनों बाद उस कोमल सी शाखा में

0: एक नाजुक सा फूल खिलेगा और उसके बाद फल, एक दो तीन चार पांच और
1: हाँ, छह सात बाबा, लेकिन उसके बाद
0: पेड़ बड़ा होगा, बहुत बड़ा।
1: पर बाबा बाबा, तब तक आप मेरा मतलब बाबा, आप तब तक शायद ही जिंदा रहेंगे।
0: हाँ, शायद।
1: तो बाबा फिर ये पेड़ क्यों लगा रहे हो आप, किसके लिए?
0: हाँ बेटा, हाँ, वृद्ध हो गया हूँ ना, और कुछ दिन या महीने के बाद शायद जिंदा ही ना रहूं। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मैं कहाँ इस पेड़ का फल खा पाऊंगा या इसकी शांत सुंदर छाया में बैठ पाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे पोते पोतियां क्यों बेचैन होकर खाली आसमान से प्रश्न पूछें? मैं तो ये पेड़ उनके लिए उगा रहा हूँ बेटा। और फिर बेटा एक बात बताओ, हम जो फल खा रहे हैं वो पेड़ क्या हमने लगाए हैं?

0: उस वृद्ध आदमी का पेड़ उगाने का जुनून देखकर मेरे मन में एकाएक प्रश्न उठने लगा, आखिर हम पेड़ किस लिए उगा रहे हैं? उत्तर ढूंढने की जी जान कोशिश में डूब गया था मैं। कल्पना के सागर में डूबता उतरता जैसे मैं बातचीत कर रहा था एक पेड़ से सपने में, अपने अवचेतन में। बहुत बड़ा विशाल पेड़ होगा, फूलों की भीड़ में उमड़ पड़ेगी पेड़ की सभी शाखाएं, और महान शक्तिशाली सूर्य की किरणों को रोकते हुए पेड़ के नीचे गढ़ेगी शांत शीतल छाया की परिसीमा। और फिर किसी कोने में छोटा सा घर बनाएगी नन्ही नन्ही चिड़िया, चिड़ियों की मधुर चहचहाट से गूंजेगा ये आंगन, और बसंत में कोयल छेड़ेगी अपना मधुर गीत।
1: हाँ, हाँ, कहते जाओ युवक, कहते रहो। इन शब्दों से, तुम्हारे एक एक वाक्य से मेरा अल्लड़ सा यौवन रोमांचित और पुलकित हो रहा है। भविष्य के सुंदर सपनों से मैं और उत्साहित हो रहा हूं। बताओ बताओ युवक, बताओ, कहते जाओ अपनी कहानी का हर खंड, उसकी सभी पंक्तियां, सभी अनुच्छेद, पूर्ण विराम तक। कहते जाओ युवक, कहते जाओ।
0: हाँ हाँ, पर पेड़ ये क्यों नहीं सोचते कि इससे पहले कोई तूफान भी तो आ सकता है?
1: नहीं नहीं युवक, नहीं।
0: बाढ़ आ सकती है, या फिर तुम्हारी ही किसी शाख पर शायद कोई जहरीला अजगर छिप सकता है।
1: नहीं नहीं नहीं।
0: और फिर तुम्हारे उन पक्षियों के सुंदर सलोने घोंसले, इन्हें कैसे बचाओगे तुम? सोचा है कभी?
1: नहीं नहीं युवक, नहीं।
0: और फिर एकाएक अचानक भूकंप भी तो आ सकता है।
1: बस बस करो युवक, बस।
0: ये सब तो सिर्फ आशंकाएं हैं, भयानक ही सही, पर किसी न किसी युवक के हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ना तो निश्चित है।
1: चुप कर युवक, चुप कर। यूं तुम्हारे बोले हुए हर शब्द मुझे मुझे बेचैन कर रहे हैं। क्यों मेरा सुंदर सा सपना ईंट पर बिखरता नजर आ रहा है? क्यों युवक, क्यों?
0: अब पेड़, ये क्या कह रहे हो तुम?
1: वही वही जो तुम्हें करना

0: करना चाहिए जो वो वृद्ध कर रहा है।
1: जिंदगी और मौत के साथ आंख में जौली करता 60-70 साल का ये बूढ़ा अपने वंशजों के लिए कुछ आदर्श मात्र रखने के लिए जो कोशिश कर रहा था और इसी संकल्प को लेकर भिड़ा हुआ है सुबह से शाम तक, तो मुझे भी वही करना चाहिए।
0: वही वही तो मैं कहता हूं युवक, तुम कुछ पेड़ नहीं उगा सकोगे। एक बार सोच लो, ये जो आशंकाओं का घेरा मुझे और शायद तुम्हें भी आतंकित करते हुए बेचैन कर रहा था, उसका क्या कुछ समाधान नहीं? आदमी के हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अनगिनत पेड़ काटने की निर्दयता करता रहेगा, उसे तुम रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे। तुम्हें कुछ करना होगा युवक, कुछ करो। सब कुछ खत्म होकर काल के गर्भ में विलीन होने से पहले कुछ करो, पेड़ के लिए कुछ करो।

0: हाँ, मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सबको जागृत करूंगा, सबके दिल और दिमाग में पेड़ों के लिए प्यार, मोहब्बत, इज्जत, त्याग, बलिदान के जज्बों की मशाल जलाऊंगा। मैं अपने सुंदर पर्यावरण को अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। हाँ, मैं कुछ करूंगा।
1: बादल, ए बादल, देखो ना वो पेड़, वहां जाएंगे ना हम।
2: वहां? वहां जाकर क्या करोगी वर्षा?
1: बैठेंगे।
2: क्या? सिर्फ बैठेंगे?
1: बातचीत करेंगे।
2: यानी गुफ्तगू।
1: जैसे सभी प्यार करने वाले करते हैं।
2: अच्छा, बिल्कुल जाएंगे।
1: और एक दूसरे से हम भी तो।
2: वर्षा, वहां नहीं जाएंगे।
1: क्यों?
2: वहां कवि की कल्पना के नायक नायिका बैठते हैं, पेड़ के नीचे, समुद्र के किनारे।
1: तो हम क्या काल्पनिक हैं?
2: हम कवि की कल्पना और कहानीकार के चरित्र के अंदर जैसे खुद नहीं है वर्षा।
1: तो बादल, हम पेड़ के पास नहीं जाएंगे? तो आओ अब वास्तविक दुनिया में आ जाएं।
2: वर्षा के पास?
1: छोड़ो ना। जानते हो बादल, वर्षा जिंदा तो है मगर अधूरी सी है। अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही, सब कुछ खाली खाली सा लगता है।
2: ये अधूरापन कैसा है वर्षा?
1: मेरा अधूरापन तो तुम भरोगे ना बादल, मुझे अपना कर।
2: वर्षा, मेरी मजबूरियां तुमसे छिपी नहीं है। देखो ना, अधूरा तो मैं हूं।
1: बादल, तुम इतनी छोटी सी तकलीफ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बनाते?
2: कैसे बनाऊं वर्षा, एक सामान्य परिवार का अभावग्रस्त लड़का।
1: और मेरे पास कहाँ है संपत्ति? अभावों को रास्ते का रोड़ा मत बनने दो बादल।
2: वर्षा,
1: 2 महीने बाद तुम नौकरी तलाश करने वालों की कतार से भी रिटायर हो जाओगे।
2: तुम ठीक कहती हो वर्षा, देखो मैं उच्च शिक्षित हूँ, नौकरी नहीं मिली तो?
1: तुम्हारे लिए नौकरी ही सब कुछ है बादल। क्या तुमने मेरे बारे में भी कभी सोचा है? इस पेड़ जैसी मेरी स्थिति भी नहीं लगती?

0: सब कुछ होते हुए भी अधूरापन, एक अनजाना सा डर।
1: क्या करें वर्षा, चलो वापस चले।
0: हमें इस पेड़ के पास आना ही नहीं चाहिए था।
1: क्यों
0: बादल, मैं इस पेड़ जैसी नहीं बनना चाहती, हमेशा एक भयानक हादसे से भयाकांत।
1: वर्षा,
0: 60-70 साल के होने के बावजूद पापा आज भी पेड़ लगाते हैं। बादल, पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं वो, मुझसे हर वक्त उनकी देखभाल के लिए ताकीद करते रहते हैं। लेकिन बादल, न जाने क्यों पापा का पेड़ों को लेकर तर्क मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अक्सर उनके अतीत से प्रश्नों के साथ उलझ पड़ती हूँ। जानते हो, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
1: पेड़ों को लेकर?
0: हाँ,
1: क्या हुआ था?
0: तुम सुनोगे वो कहानी?
1: अरे बताओ ना।
2: पेड़ में पानी दे दिया बेटी?
0: पानी की अब जरूरत नहीं है पापा, पेड़ बड़ा हो चुका है।
2: अरे उसे तो और बड़ा होना है।
0: और बड़ा?
2: इसीलिए शुरू से ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए।
0: आप पेड़ के बारे में कह रहे हैं ना पापा?
2: हाँ।
0: अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप मेरे बारे में।
2: क्या कह रही हो बेटी?
0: पापा, आदमी पेड़ जैसा नहीं बन सकता ना।
2: अरे पगली, क्या हो जाता है तुझे, कभी कभी इस तरीके के अजीब सवाल कर लेती है, हैं? जा बेटी जा, पानी ठीक से डाल दे। पेड़ अभी संभल चुका है, सही ढंग से देखभाल करेंगे ना तो जल्दी फूलेगा फलेगा। हाँ
0: पापा, मैं सोच रही थी।
2: क्या?
0: वो उस सपने के बारे में जो मैंने आज सुबह देखा था।
2: अरे सपना तो सपना होता है बेटी, सपने तो सभी देखते हैं, हैं? और उसे कहने और सोचने की क्या जरूरत है?
0: जरूरत है पापा।
2: वर्षा, अब तुम बच्ची नहीं हो भाई।
0: हाँ पापा, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ? पापा, मैं भी जानती हूँ कि मैं काफी समझदार हो चुकी हूँ, और इसीलिए बिना संकोच के मैं बादल और अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
2: वर्षा, अपने पिता के सामने भी कोई संकोच नहीं है? कुछ पढ़ लिख गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आंखों की शर्मो हया भी जाती रहे?
0: आप जवाब देंगे पापा मेरे कुछ सवालों का, सीधा सीधा जवाब?
2: कैसे सवालों का जवाब?
0: वो सवाल जो शायद किसी बेटी ने कभी अपने पिता से नहीं पूछे होंगे।
2: वर्षा,
0: काश आपने मेरी जिंदगी को भी इन पेड़ों की तरह सींचा होता। काश मेरी जड़ें भी इतनी ही मजबूत होती कि मुझे कभी भी मुरझा जाने का भय तो नहीं सताता।
2: आज तेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बेटी।
0: पेड़ अगर अचानक कमजोर हो जाएगा तो?
2: तेरी जो मर्जी होकर, मुझे परेशान मत कर। हाँ।
0: बादल और वर्षा के मिलने से अब...
2: मैं जानता हूँ। बादल के करतूतों का मुझे पता था, एक दिन वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा।
0: बादल मेरी मांग को सिंदूर तो नहीं दे सका, मगर हम दोनों के प्रेम का प्रतीक वह कोमल सा फूल।
2: वर्षा, ये क्या कह रही है तू?
0: हाँ पापा, पर वो फूल से सुंदर दुनिया की पहली किरण देखने से पहले ही शायद।
2: वर्षा,
0: कैसे पापा, कैसे मैं कर सकती थी? समय के दिए हुए कांटे रूपी पाले में उसका पालन कैसे?
2: बस कर वर्षा, बस कर।

0: तो पापा को सब कुछ कह दिया तुमने?
1: हाँ बादल, हमारे प्यार की दास्तान।
0: प्यार की दास्तान या मेरी कायरता?
1: बादल,
0: तुमने उनसे यही कहा ना?

0: अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हुए भी बादल ने तुम्हें अपनाया नहीं?
1: लेकिन बादल,
0: मेरी बात सुनो वर्षा, कैसे और कहां से मैं तुम्हारा सहारा बनता, जिसका अपना एक स्वतंत्र परिचय नहीं, ठिकाना नहीं, वो भला कैसे खिलखिलाते हुए सुकुमार फूल को?
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए बादल, कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ पूर्णता चाहिए थी, एक परिचय, एक भरोसा चाहिए था, वो मुझे दिलाती समाज की स्वीकृति। मैं किसी भी सड़क का कोई बेसहारा पेड़ नहीं, बल्कि तुम्हारे आंगन की बगिया का एक पेड़ होना चाहती हूँ, अशोक वन का एक फला फूला लहलाता पेड़ बनना चाहती हूँ बादल।
0: लहलाता पेड़ अपने एक आंगन के लिए, हाँ सिर्फ एक आंगन के लिए, परिचय के लिए तुम छोड़ सकोगी हंसता खेलता परिवार? बोलो, अपने भविष्य के अपने सपने को सच करने की कोशिश में लगे अपने छोटे भाई बहनों को छोड़ सकोगी? जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही तुम्हारी बीमार माँ और पापा की थोड़ी सी पेंशन के सहारे छोड़कर यहाँ रह जाओगी वर्षा?
1: हाँ, रह सकूंगी, कर सकूंगी, मैं सबको छोड़ दूंगी बादल।
0: क्यों वर्षा, क्यों?
1: क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख में खिलने वाला फूल चुपके से मुरझा जाए बादल।
0: वर्षा,
1: बादल।

0: उस दिन वर्षा ने मेरा बहुत तिरस्कार किया, हाँ? मुझे कोसा, मैंने अपने ऊपर से भरोसा ही खो दिया था। एक तरफ वर्षा की चाहत और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी, हाँ? मैं क्या करूं मैं? वो बादल परशर जिसके एक इशारे पर यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र आवाज बुलंद कर देते थे, उस बादल को वर्षा जैसी एक साधारण सी लड़की सहारा ना दे पाने के कारण इतनी बातें कर रही थी, हाँ, इतनी बातें। अरे धिक्कार है मुझ पर, ये पुरुषत्व नहीं बादल। नहीं, बादल पराशर हार नहीं मानेगा। हाँ, अरे उम्र खत्म हो गई ना, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई बादल तेरी, हाँ? अरे मुझे तो कुछ करना होगा, हाँ, कुछ करना होगा मुझे कुछ करना होगा।
1: बादल, ओ बादल, ओ बादल पाराशर।
0: कौन?
1: अरे मैं राजू। अरे राजू यार, तेरे बचपन का दोस्त।
0: अरे राजू तू? अरे यार, कितने दिनों बाद हम मिले हैं, इधर आ, गले तो लग जा।
1: अरे आजा यार, आजा। अब ये बता, मैंने तेरे को ठीक पहचाना कि नहीं? लेकिन यार तू कुछ मोटा हो गया है।
0: अच्छा, लेकिन राजू तुझे क्या हुआ, हा? ऐसी हालत, अरे ये बेरुखा सा चेहरा, क्या बात है?
1: यार मैं एक मिशन में लगा हूं।
0: मिशन? नेतागिरी करनी है क्या?
1: नहीं यार।
0: अच्छा, तो क्या नौकरी के लिए संघर्ष?
1: ओ नो यार।
0: अरे तो फिर
1: मेरा मिशन पेड़ है।
0: क्या पेड़? पागल हो गया है क्या तू?
1: यार ये मेरा पागलपन नहीं है बादल। मेरे पीछे जानता है कितने हजारों लोग इस मिशन में शामिल हैं।
0: अच्छा, बात तो ठीक है, पर ये बता कि मुझे क्या करना होगा।
1: वो पहाड़ी गांव का बूढ़ा आदमी मुझे जागृत कर गया, चेता गया पेड़ों की रक्षा के लिए कुछ करने का एहसास दिला गया मुझे।
0: क्या, पेड़ उगाने वाला बूढ़ा आदमी पहाड़ी गांव का?
1: हाँ, अब वो ब्रज किशोर नाम है उसका।
0: ब्रज किशोर? वर्षा के पापा?

0: अब कुछ कह रहे हो क्या बादल?
1: कहना तो बहुत कुछ है राजू।
0: बादल बादल?
1: जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है राजू।
0: अच्छा, मतलब यानी तेरे साथ बिना अपॉइंटमेंट इतनी बात करना भी मेरी खुशकिस्मती है?
1: आखिर राय साहब का पूरा कारोबार मेरे हाथों में है राजू।
0: हाँ, तू तो पक्का बिजनेसमैन हो गया यार। तू पेड़ के लिए कुछ कर यार बादल।
1: मैं राय साहब का वारिस बन चुका हूं।
0: और राय साहब के आदेश के मुताबिक तुम एक हरे भरे जंगल को साफ करके होटल बनाने के इरादे में हो।
1: मुझे पेड़ काटना ही पड़ेगा राजू।
0: तुम पेड़ नहीं काटोगे बादल,
1: ओ, तो धमकी दे रहे हो?
0: चेतावनी दे रहा हूं।
1: अच्छा अच्छा राजू, अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी तो?
0: देख बादल, हम तुझे ये बर्बरता नहीं करने देंगे।
1: राजू मुझे चैलेंज कर रहा है तू?
0: हाँ राजू, तुझे चैलेंज कर रहा है बादल। बादल पाराशर को राजू चैलेंज कर रहा है।
2: मैं वर्षा चौधरी, एक अविवाहित नौकरी पेशा लड़की, मैं अभी तक समाज में अपना एक परिचय बनाने के इंतजार में थी। मुझे सहारे की जरूरत थी, लेकिन जब जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं तो समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर शायद अपना परिचय बनाने की कसमसाहट आज भी कायम है। अरे राजू!
0: अरे वर्षा जी, आप?
2: सिर्फ वर्षा कहो राजू।
0: अच्छा अच्छा वर्षा, और अचानक यहाँ?
2: बादल के साथ तुम्हारा वार्तालाप सुन रही थी।
0: हाँ, बादल तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है।
2: जानती हूँ, राय साहब का जमाई।
0: तुम बादल से मिली?
2: क्या फायदा, पता है राजू, बादल के पास ढेरों उम्मीदों के साथ गई थी, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ एक सहारे के लिए।
1: मेरे पास बार बार आकर मुझे और अपने आप को परेशान मत करो वर्षा। हाँ, मैं कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही व्यस्त हूँ।
2: लेकिन बादल, तुम मुझे देखकर इस तरह चिड़चिड़ा क्यों रहे हो?
1: तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए मेरे पास समय नहीं है वर्षा।
2: मैं घूमने नहीं आई हूँ बादल, मैं घर बसाने आई हूँ बादल।
1: घर?
2: हाँ, हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए, एक अशोक वन के लिए।
1: क्या वर्षा, होश में तो हो?
2: हाँ बादल, कब तक हम दोनों सारी दुनिया को भुलावे में रखते हुए ऐसे बहाने करते रहेंगे?
1: क्या?
2: और हमारे बीच ये झूठा रिश्ता कब तक? कब तक मैं कुमारत्व का झूठा हस्ताक्षर बनती रहूंगी?
1: देखो वर्षा, अब मैं बेकार नहीं हूं। अतीत की सभी यातनाएं भूलने को मजबूर हुआ हूं। नए तरीके के जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूं।
2: तो बादल, हमारा वो प्यार, वो पहला फूल?
1: सब भूल जाओ वर्षा, सब भूल जाओ, मैं अब शादीशुदा हूं।
2: बादल, तो आखिर तुमने राय साहब की अपाहिज लड़की को? ओ गॉड!
1: ये जो प्रोजेक्ट देख रही हो ना, ये होटल वाला,
2: इसके लिए?
1: हाँ, मुझे जंगल के बहुत से पेड़ काटना पड़ेंगे।
2: मैं वापस आ गई राजू।
0: अच्छा ही हुआ वर्षा।
2: राजू, तुम मुझे ठुकराओगे तो नहीं?
0: मेरे पास क्या है वर्षा?
2: जीने का ये संजीवनी मंत्र।
0: संजीवनी मंत्र?
2: हाँ, पेड़ के लिए हमदर्दी।
0: हाँ वर्षा, पेड़ों के लिए ढेर सारे सपने हैं मेरे।
2: राजू, पेड़ ही जीवन की परिभाषा है
0: और हमारे पर्यावरण का आधार भी तो है।
2: मैं इन पेड़ों के लिए तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ लड़ूंगी, विद्रोह करूंगी। राजू, मेरे पापा के द्वारा उगाए गए सैकड़ों पेड़ों को मैं बादल जैसे सुविधावादी, पर्यावरण के दुश्मन का निशाना नहीं बनने दूंगी राजू, नहीं बनने दूंगी।
0: हाँ वर्षा, हाँ, यही होगा हमारा मकसद और हमारी जिंदगी का सही परिचय भी।
2: जब तक पेड़ शांति से नहीं जी सकेंगे, शायद हमारे भी जीवन का सपना बदल जाएगा। हाँ राजू, हाँ, हमारा लक्ष्य होगा पेड़, पेड़ का जीवन।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अशोक वन का पेड़। भाग लेने वाले कलाकार थे राजू सुनील वैद्य, बादल अरशद इकबाल, पेड़ मोहम्मद नजीर कुरैशी, ब्रिज आर एन चतुर्वेदी और वर्षा प्रिया चंदनानी। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी।

अभी आपने नाटक सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन। राग है बिहाग।

अभी आपने रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन सुना, राग था विहाग। इसी के साथ आज का राग रजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया

ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: grievance redressal mechanisms. And in badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Garde defeated Chinese Taipeis Yang Fuxuan and Hu Lingfang. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।